0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यही है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार 30 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5 बज रही है।
4: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty. वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात। 5:05 हुए हैं संडे की सुबह और ऑनेस्टली इस समय दुनिया थोड़ी सी अलग लगती है ना। अभी पूरी तरह से सभी लोग जागे कहाँ हैं, सड़कों पर कुछ भी वो यूजुअल रश नहीं है। यानी कि आज जो लोग काम पर जाते हैं, यानी कि संडे भी लोग काम पर जाते हैं, बट उतना नहीं, कम हो जाता है। इसलिए ना कोई चहल पहल, ना कोई शोर शराबा, बस कई घरों में अभी तक कई लोग सो रहे हैं, कहीं पर चाय बन रही है और कहीं कोई ऐसे ही आंखें खोलकर भी कंबल के अंदर चला गया है और अपने मोबाइल देख रहा है। वेल, दैट्स द न्यू नॉर्मल संडे। और हमने संडे की शुरुआत भी की है लता जी की आवाज़ में, बाहों में चले आओ, ये ब्यूटीफुल गाने के साथ है। इससे ज़्यादा खूबसूरत बिगिनिंग और क्या ही हो सकती है। संडे वीकेंड का आखिरी दिन ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज मंडे की टेंशन लेकर बैठना है। आज का दिन है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सांस लेने का, अपनों के साथ समय बिताने का और सबसे ज़रूरी खुद के साथ समय बिताने का। तो अगर आप भी बेड पर है, कोई बात नहीं, रिलैक्स के साथ थोड़ा और आराम कीजिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं तो इन सारा बाहर गानों को अपना हमरा ही बनाइए। और जो लोग संडे को भी ड्यूटी पर हैं, आपके लिए तो एक स्पेशल सल्यूट। यही कभी कभी बहुत ही कठिन सा लगता है जब आप देखते हैं कि आपका पूरा परिवार सो रहा है और आप जाग रहे हैं और काम के लिए निकल रहे हैं। बट बिग सल्यूट टू यू। सो आज के दिन बस एक छोटा सा प्रॉमिस आप खुद से कीजिए कि हर चीज़ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिन को खूबसूरत ही तो बनाना है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया और आप सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। संडे की सुबह है और रसला बाहर गाने है साथ। चलिए म्यूजिक को हम बोलते हैं दिल की बात कहने के लिए। जी हाँ, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ पर। नॉट टू फॉरगेट, आपके डेडिकेशंस मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294।
1: Chillax with Radio Musty, your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने ज़रूर नोटिस किया है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कितने भी साल पुराने हो जाए उनकी फीलिंग कभी पुरानी नहीं होती। आप उन्हें पहली बार किसी कैसेट पर सुनते हैं, फिर रेडियो पर, फिर टेलीविज़न पर, और आज भी जब वही धुन कान में पड़ती है तो एकदम से कोई पुरानी याद सामने आ जाती है। कभी किसी दोस्त की याद, कभी कॉलेज के दिन, कभी पहला प्यार, कभी घर का कोई खूबसूरत पल। गाने असल में सिर्फ म्यूजिक तो नहीं होते, वो मेमोरीज के छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। और सदाबहार गानों की सबसे खास बात ही यही है, इनमें एक सिंप्लिसिटी है, एक मिठास है, ना जल्दी ना शोर, बस सुर, अल्फाज और आवाज। आज संडे है तो क्यों ना हम भी थोड़ा ये पुराने जमाने की तरह स्लो हो जाए, फोन को थोड़ी देर साइड में रखे, नोटिफिकेशंस बाद में चेक कर लेंगे, सोशल मीडिया कहीं भाग तो नहीं रहा, अभी सिर्फ म्यूजिक को फील करते हैं। और अगर कोई ऐसा गाना है जो सुनते ही आपको किसी खास इंसान की याद आ जाती है तो समझ लीजिए कि वो गाना आपके लिए सिर्फ गाना नहीं, एक कहानी है। तो चिलैक्स पर आज हम उन्हीं कहानियों को म्यूजिक के जरिए जिएंगे। संडे मॉर्निंग रेडियो मस्ती और दिल को छू लेने वाले सदाबहार गाने। स्टे विद मी, आई एम हियर विद द बेस्ट ट्रैक्स। आपके रिया आपके साथ ऑन दिस ब्यूटीफुल

0: संडे मॉर्निंग. वैसे आप शो की प्लान्स भी बहुत सारे आप बना रहे हैं, तो चलिए आपके प्लान्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. फिलहाल ये खूबसूरत गाना.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: चलिए जी, अभी हमारे सबसे फेवरेट सेगमेंट की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि आपके मैसेजेस की ओर। यहाँ पर संडे मॉर्निंग काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं। वेल, कई लोग सोचते हैं कि संडे इज इट्स ओनली मेंट देर से सोना, लेकिन नहीं, कई लोगों की आदत बन चुकी है, बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं और उठते ही हमारे साथ कनेक्ट कर जाते हैं। सो ये सबके मैसेजेस यहाँ पर हैं। वी हैव सवेरे सवेरे देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते, आपको हैप्पी संडे विश करते हैं सभी को और डेडिकेट करना चाहते एक अच्छा सा गाना फॉर बबीता दर्शनी, क्रिस्टीना कोलेंडर, या ऑलराइट, हम सब

0: रोशन आएंगे नेक्स्ट ट्रैक आपके सभी परिवार वालों के नाम, दोस्तों के नाम। अब्दुल और सारा बानू जी हमारे साथ है, विशिंग सभी को अ हैप्पी संडे। वेल ये संडे हैप्पी हैप्पी ही जाएगा एंड आई होप कि आपके लिए भी बहुत ही हैप्पी जाए। एंड वी हैव दावे दोस्त परिवार हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं बॉम्बे से, थानेश्वर जी, आपकी पत्नी है सुनीता, रेखा, निशा एंड द होल फैमिली एज वेल। सो यस नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम। प्रणाम जयशन जी, कैसे हैं आप? रिश्मा फ्लैग से जुड़े हुए हैं। आज आई थिंक कि आप घर पर ही होंगे क्योंकि कल आप काम पर थे तो आज घर पर। एंड आज आप डेडिकेट करते हैं गाना फॉर हिमाक्षी, कुष्मिता, लवना, ब्यमती, द होल उदयाल परिवार। ज़रूर नेक्स्ट गाना आप सभी के नाम। एंड कुछ मॉर्निंग मैसेजेस यहाँ पर बहुत सारे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं पर नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम आपकी जो गुड विशेज हैं हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचा रहे हैं। नंदिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है और एक गाना फ्रॉम द मूवी घर आप रिक्वेस्ट कर रही है। और राइट, वैसे घर मूवी का एक गाना हमारे पास है, हमारी प्लेलिस्ट में है, तो देखेंगे अगर हो सके तो हम ज़रूर चलाएंगे आपके नाम। एंड यहाँ पर हमारे साथ सरोज जी, राजेन, मोनिका, उमेश, पूनम सब जुड़े हुए हैं। एक शमी कपूर जी का गाना सुनना चाहते हैं। राइट, चलिए हम देखेंगे और टाइम मिले तो हम ज़रूर चलाएंगे आप सभी के नाम। शादो बिना से आशनी, रेखा, सुरेखा और माधव परिवार, ज्योति जी ने ये मैसेज भेजा है, हमारे लिए भी गाना आप डेडिकेट करना चाहती है। थैंक यू, दैट सो स्वीट ऑफ यू। और ज़रूर हम डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट गाना आपके पूरे परिवार के नाम। एंड सपना आप हमारे साथ कनेक्टेड है और नेक्स्ट ट्रैक आप अपने प्यार प्रकाश के नाम डेडिकेट करना चाहती है, जो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। एंड द सॉन्ग जब कोई बात बिगड़ जाए तो हो सके तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं और आपके जो मैसेजेस रह गए हैं इस कॉल हम लेकर थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे।
1: RM2 Radio Musti

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अपने घर मिलाते चलिए, 6:45 हैं और समय हो चला है आपको बताने का कि आज का दिन आपके लिए कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन नई उम्मीद और अच्छे विचार लेकर आएगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। कोई पुराना काम पूरा हो सकता है। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज मन शांत रहेगा और रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किसी अपने से अच्छी खबर मिल सकती है। खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखिए। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी बातों का असर दूसरों पर अच्छा पड़ेगा। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी पुरानी परिचित से मुलाकात भी हो सकती है। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज घर परिवार से जुड़ी कोई खुशी मिल सकती है। मन में चल रही चिंता थोड़ी कम होगी और अपने लिए भी थोड़ा समय निकाली। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और कोई नया विचार मन में आ सकता है। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज का दिन सुकून और छोटी छोटी खुशियों से भरा रहेगा। कोई पुराना अधूरा काम पूरा हो सकता है। सेहत और आराम का ध्यान रखें। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। धन से जुड़ा कोई छोटा लाभ भी आपको मिल सकता है। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। किसी अपने की सलाह काम आएगी। मन को शांत रखें और बातों को ज्यादा ना सोचें। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। घूमने फिरने या परिवार के साथ समय बिताने का अवसर आपको मिल सकता है। कोई अच्छी खबर दिन बना देगी। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज काम के साथ आराम को भी महत्व दें। परिवार में किसी की मदद से मन खुश रहेगा। पुरानी चिंता से राहत मिल सकती है आपको। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज कोई नया अवसर सामने आ सकता है। दोस्तों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपने फैसलों पर भरोसा पर रखें। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है लेकिन दिन अच्छा बीतेगा। किसी खास व्यक्ति से बातचीत मन हल्का करेगी और घर में खुशी का माहौल रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 3। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Chillax with Radio Musty.
1: वीकेंड का आखिरी

यानी आज संडे है तो एक छोटा सा रूल हम साथ में बनाते हैं। आज किसी चीज की जल्दी नहीं, सुबह उठना है, आराम से चाय पीनी है ये भी आराम से, ब्रेकफास्ट बनाना है ये भी आराम से, और किसी से बात करनी है तो दिल से। हमारी जिंदगी में वीक डेज वैसे ही बहुत फास्ट होते हैं, अलार्म बजता है, फोन चेक होता है, मैसेजेस, काम, ट्रैफिक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पता ही नहीं चलता कि कब दिन खत्म हो गया। इसलिए संडे हमें एक छोटा सा रिमाइंडर देता है कि लाइफ को सिर्फ मैनेज नहीं करना, एंजॉय भी करना है। आज अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताइए, बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनिए, पार्टनर के साथ चाय आप शेयर कर सकते हैं, वैसे चाय तो शेयर नहीं करते लेकिन कर सकते हैं, किसी दोस्त को बिना किसी काम के फ़ोन भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको बस अकेले रहना पसंद है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अपनी फेवरेट चाय या फेवरेट म्यूज़िक और थोड़ा सा पीसफुल टाइम, कभी कभी इससे बेहतर कंपनी और क्या ही होगी। और वैसे भी संडे का असली लग्जरी आपको पता है क्या है? थोड़ा एक्स्ट्रा सोना। तो जो लोग अभी तक नहीं उठे उनके लिए कोई अलार्म नहीं, हम चिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप उठ भी जाते हैं तो आप भी चिलैक्स ही करेंगे यहाँ पर इन ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया, और आपके संडे को बना रही हूँ थोड़ा स्लो, थोड़ा सोलफुल और बिल्कुल चिलैक्स।

प्यारी सी हमारी भारती जी है, पंजाबी मौसी जुड़ चुकी है हमारे साथ और अपने भाई विक्रम, बहन हेमलता स्वीटी के नाम गाना रिक्वेस्ट करेगी है। वैसे ये गाना हम उनके नाम चला रखे हैं एंड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड है, बेटा अवेश, अविष्टा, अविनाश, आदु, कृष, करण, मामा लीना एंड द होल दौलत परिवार जो है प्लिंदी पापाई से ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।

0: रेडियो मस्ती
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: A very good morning, aap sabhi ko. Suprabhat. Ghar milate chaliye subah ke theek 6 baj rahe hain. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ सुनते हैं. नमस्कार आपको याचना.
6: नमस्कार रिया, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार और आदाब. सुनिए संक्षिप्त समाचार. पुधोदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मौत के मामले में शामिल हुआ. इसके कुछ ही दिन बाद जुर्के ने गवर्नमेंट स्कूल की ग्रेड 6 की एक छात्रा के कूद कर गिरने की घटना सामने आई. इस पर कई सवाल खड़े हुए हैं. जारी जाँच के नतीजों पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना इन घटनाओं ने एक अहम सवाल को फिर सामने ला दिया है. क्या हम अब जानते हैं कि हमारे बच्चे और किशोर किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या नहीं. कुछ बर्तावों के पीछे कभी कभी मानसिक परेशानी, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक दबाव या भावनात्मक पीड़ा छिपी हो सकती है. शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत पर जोर दिया. पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया. इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में ही संभव हो पाया जिन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत थी. साथ ही इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिला है. इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत को कम करना और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को और मजबूत करना है. पुटरी में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रोबेवेल कलेक्शन की अर्ध प्रतिमाएं रखी जाएंगी. ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण एथनोग्राफिक कलेक्शन है. अभी अंतर्राष्ट्रीय स्लेवरी म्यूजियम में मात्र 3 मूर्तियां प्रदर्शित हैं जबकि बाकी के 50 पीस को अभी फ्रांस में है रखा गया है. उन्हें 2027 तक यहाँ लाने की योजना बनाई गई है. विदेश में यूक्रेन में बचाव कर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग मॉल के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं. केवीरी में 2 ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया. 16 लोगों की मौत हो गई है जबकि 130 लोग घायल हुए हैं. 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं. अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल. स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं. हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह धूप खिली रहेगी. दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे. हल्की बारिश भी हो सकती है. रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी. हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16 और अधिकतम 22 से 24 जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

0: सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:59 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.

0: था सुबह को महसूस किया और रब बारी है कुछ सुकून भरे नरम नरम गानों की, ऐसे गाने जिन्हें सुनते ही बस मन करता है कि थोड़ी देर चुप रहे, आंखें बंद करे और संगीत को अपने साथ बहने दे। और इस आवर की शुरुआत हमने की पापन की आवाज़ में, तो जो मिला बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत एहसास, जैसे किसी अपने का साथ मिल जाए और अचानक जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगे। वेल संडे है, इसलिए आज की सुबह में कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा आराम, थोड़ी चाय, थोड़ी बातें और ढेर सारा अच्छा संगीत। अगर आप घर पर है, काम कर रही है, सुबह की तैयारी कर रही है या बस इस समय या रेडियो मस्ती के साथ बैठे हैं, ये घंटा आपके नाम। एंड वेल आई थिंक नहीं, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग गंगा तालाब की ओर प्रस्थान कर रहे हैं श्रावण मास की संडे। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो गंगा तालाब में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंड वहाँ पर कुछ पिक्चर्स भेज रहे हैं। सो थैंक यू हमारे साथ। आई थिंक यहाँ पर आपने एक मैसेज भेजा था, भारती जी कनेक्टेड है हमारे साथ एंड कावर के पिक्चर्स भेज रही है, बहुत ही प्यारे प्यारे कावर है वहाँ पर। थैंक यू सो मच भारती जी, वहाँ पर आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम। वैसे गुड टाइम नहीं, बट बहुत ही पायस टाइम, बहुत ही अच्छा समय क्या बीत रहा है एंड शायद बाद में हम भी आ जाए। सो हैव अ ग्रेट टाइम और आप लोग के साथ आप ये गाने भी एंजॉय करते रहे। वेल नेक्स्ट ट्रैक वी हैव महादेव जी का एक गाना जो हम चलाएंगे हमारे सभी लिसनर्स के नाम। तो चलिए नेक्स्ट ट्रैक सभी के नाम और इसके बाद कुछ और बातें होंगी।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

A very good morning आप सभी को सुप्रभात. कैसे हैं आप? 6:08 हो चुके हैं और संडे की सुबह अब थोड़ी और रोशन हो रही है. आप सुन रहे हैं रिलैक्स रेडियो मस्ती पर और सेकेंड आवर शुरू हो चुका है एंड अभी तो इन गानों का रंग थोड़ा हम बदलेंगे. अभी तक हमने सदाबहार नगमों के साथ

चलिए हमारे साथ लीना जी जुड़ चुकी है ब्लेंड गोश्त से और आपकी प्यारी सी छोटी सी प्रिंसेस रिया अभी अभी उठी है और आप काम के लिए रेडी हो रही है, तो आपके पूरे परिवार के नाम, पति राजीव, शिव शंकर परिवार और बिखान परिवार के नाम ये ब्यूटीफुल गाना।

0: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 6:30 हैं। सभी को नमस्कार। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। इन दिनों बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुदुहदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मृत्यु में शामिल और ग्रेड 6 की छात्रा के कूदकर गिरने की घटना सामने आई। इस पर मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज़्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इस वास्ते मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत को कम किया गया और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को और मजबूत करना यही इसका उद्देश्य रहा। पोर्टली में पुरानी मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रोबाविल कलेक्शन की अर्धप्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है। विदेश में यूक्रेन में एक शॉपिंग सेंटर पर किए गए 2 ड्रोन हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 16 तक पहुंची। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। पुदुहदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मौत के मामले में शामिल हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद जुल्केनिक गवर्नमेंट स्कूल की ग्रेड 6 की एक छात्रा के कूदकर गिरने की घटना सामने आई। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जारी जांच के नतीजों पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना इन घटनाओं ने एक अहम सवाल खड़ा किया है। क्या हम जानते हैं कि हमारे बच्चे और किशोर किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को ज़्यादा सुरक्षित बनाने और बच्चों की बातों और विचारों को अधिक ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद को सुनते हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी जेनी यालापा ने। विवरण तीना बुदना का है।
1: Quand nous trouvons bons enfants, pierre bon signal de détresse, nous avons bon dimoun compétent, qualifié, professionnel, qui commence.
2: जब हमें लगता है कि कोई बच्चा परेशानी में है और मदद चाहता है, तो हमारे पास योग्य और अनुभवी लोग हैं जो ऐसे बच्चों की देखभाल और मदद करती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बच्चों में परेशानी के ये संकेत कई बार घर में होने वाली हिंसा के कारण भी होते हैं। घर में उन्हें भावनात्मक, शारीरिक या यौन शोषण का सामना करना पड़ सकता है। कई बच्चे बहुत खराब और तनाव भरे माहौल में रहते हैं। जब वे स्कूल आते हैं और अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं, तो उन्हें जरूरी मदद और सहारा दिया जाता है। हम हमेशा अपने शिक्षकों से भी कहते हैं कि अगर उन्हें लगे कि किसी बच्चे को मदद की जरूरत है, तो वे हमें बताएं। मंत्रालय हमेशा ऐसे बच्चों के साथ है और हमारी पूरी टीम उन्हें जरूरी सहारा और मार्गदर्शन देती है।
1: Nous donnons tout ça soutien là et tout le temps nous dire nous ban professeur si je trouver et dans enfants qui besoin ça soutien là nous toujours là ministère toujours là ni dans

0: कि तुझू अंकादरी समान जांफोला।
1: पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में संभव हो पाया जिन्हें स्पेशलाइज्ड इलाज की जरूरत थी। साथ ही इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर भी मिला। इस बात पर और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुकापादुसुबाराज नायहू जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एनसीसी हैं। इनसे बात की हमारी सहयोगी निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण तीना बुदना का है।
2: ये आंकड़े अस्पताल में किए गए कैंसर के इलाज के मामलों को दिखाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि एक सोच समझ कर बनाई गई राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है ताकि हमारे मरीजों को देश में ही बेहतर और आधुनिक इलाज मिल सके और उन्हें इलाज के लिए विदेश पर कम निर्भर रहना पड़े। 2025 में एनसीसी में हमने 25 मरीजों की बहुत बड़ी और कठिन सर्जरी की। पहले ऐसे मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता था। 2026 के पहले 6 महीनों में ही 27 ऐसे मामले किए जा चुके हैं। इन सर्जरी के लिए कुल 7 सर्जन बारी बारी से मॉरिशस आए। इनमें से 2 सर्जन मुख्य रूप से भारत से आए और उन्होंने इन 27 मरीजों की सर्जरी की। मॉरिशस में हमारे पास जनरल सर्जन है लेकिन कैंसर की सर्जरी के लिए विशेष सर्जन कम है, इसलिए ये हम बाहर से विशेषज्ञ सर्जनों को मॉरिशस बुलाते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि मरीजों और उनके परिवारों का विदेश जाने का खर्च कम होता है, उन्हें हवाई यात्रा, होटल और दूसरे खर्च नहीं करने पड़ते और परिवार से दूर भी नहीं रहना पड़ता। मरीज के ठीक होने में परिवार का साथ भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा विदेश जाकर इलाज कराने के लिए एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें कई बार काफी समय लग जाता है और सर्जरी में देरी हो सकती है, लेकिन जब विशेषज्ञ सर्जन मॉरिशस आते हैं और हमारे सर्जनों की मंजूरी और साथ से सर्जरी करते हैं तो काफी समय बचता है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल जाता है।
1: मंत्री पत्रिका सेवादेन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई सहायक कंपनी बनाने की घोषणा की है। सीबी एनर्जी सोलर पैनल्स के आयात और उन्हें लगाने की जिम्मेदारी संभालेगी। इस कदम का उद्देश्य होम सोलर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाना है। पत्रिका सेवादेन कल अहियता में मौजूद रहे जहां इस परियोजना के फेज 2B से 400 परिवारों को लाभ होगा। इस योजना को UNDP सहित कई साझेदारों का सहयोग प्राप्त है। क्लोडेट जेफ्रॉ गादेवाडू, गीता सुनारान।
3: यहाँ अगुयता में NLSD परिसर के हर घर में पहले से ही अपने सौर पैनल लगे हुए हैं। हर घर में 416 पैनल्स लगाए गए हैं। इससे 400 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ये परिवार हर महीने अपने बिजली के बिल में 400 रुपए से ज्यादा की बचत कर सकेंगे।
4: Solar panel, elle est pas une économie pour nous-mêmes. Quand tu peux rester avant, bien tu peux venir bien cher, plus ou moins 1000 roupies. Tu peux bien difficile pour nous.
5: Je peux payer l'électricité assez cher, 800, 900, tout dépend des foyers. Mais quand on est à nouveau là, mais on a quand même bien ici. Et là, un congé à police qui va l'indispecter, qu'il y a un bien plus bénéficié, même pas de soleil dans la maison là-haut.
3: होम सोलर परियोजना के जरिए सीईबी लोगों को देश के ऊर्जा परिवर्तन में ज्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सीईबी के कार्यवाहक महानिदेशक संजय समन कहते हैं,
6: Je pas juste ban bénéficiaire en programme gouvernement. Je aussi ban acteur dans transition énergétique nous pays. Chaque fois, cette installation produit électricité grâce à soleil, je peux aussi aider pour diminuer nos dépendances le ban combustible fossile.
3: इस परियोजना को कई साझेदारों का सहयोग मिल रहा है। इनमें UNDP भी शामिल है जो इस परियोजना के लिए $30 मिलियन की आर्थिक सहायता दे रहा है। इसकी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अलका भाटिया कहती हैं,
7: The solar panels that have been installed on your houses prove that the transition to renewable energy is not something out of reach and only for big institutions. It starts on our rooftops

0: in our communities and in our everyday life.
1: सरकार हर साल 3,600 घरों में सोलर पैनल्स लगाने का लक्ष्य रखती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने सीबी की एक अलग कंपनी बनाने की घोषणा की है।
2: Nous pour créer une subsidiaire CIB qui pour consacrer 10 à l'énergie renouvelable. Ce travail, c'est mettre pas nous. Parce que dans les 5 ans, 6 ans à venir, Maurice Bizin au moins a 80 000 lacas inéquipés avec panneaux photovoltaïques. Là, nous en a 12 000 pour l'instant. Mon demande CIB qui à partir quelques mois là, prend une mesure pour qu'il y ait un pot de panneaux lui-même.
1: होम सोलर प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2035 तक मॉरिशस के ऊर्जा मिशन में रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करने की देश की योजना का हिस्सा है।
3: गन्ने के खेतों में फसल शुरू हो चुकी है। इस बीच इस क्षेत्र को पिछले कुछ सालों से एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कर्मचारियों की भारी कमी। इस बीच गन्ना क्षेत्र अब नई दिशा पकड़ रहा है, इसमें नयापन लाने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए गन्ने की पिराई और शक्कर पैदावार के तरीकों तथा शक्कर के प्रयोग में बदलाव की जरूरत है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: सुल्फेरिनो फाक्वा में लगभग एक बीघा जमीन पर अपने खेत में दीवानन हुकुम गन्ने की खेती करते हैं। इलाके के कारखाने में वे अपने ज्यादातर गन्ने भेजते हैं। उन्होंने गन्ने से अन्य उत्पादन तैयार करने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। वे कहते हैं, मेरे दादाजी और पिताजी गन्ने की खेती करते थे। मैं तीसरी पीढ़ी में आता हूँ। मेरे बाद कोई होगा या नहीं ये निश्चित नहीं है, इसलिए हम छोटा बदलाव ला रहे हैं। गन्ने से बहुत कुछ किया जा सकता है। आज उनकी गन्ने की फसल का एक हिस्सा जॉय को बेचा जाता है। अपने बच्चों को भी गन्ने से दोबारा परिचित कराने की कोशिश में जॉय को गन्ने के सेवन के एक पारंपरिक तरीके को नए रूप में पेश करने का विचार आया। जॉय पातू कहते हैं, हम पहले बच्चों को जिस तरह गन्ना खाना सिखाते थे उसी आदत को वापस ला रहे हैं। उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और 570 किस्म के गन्ने का प्रयोग करते हैं। इसे पीला गन्ना भी कहते हैं, इसमें ज्यादा रस होता है। वही सिलेयन ने गन्ने के रस पर ध्यान देने का फैसला किया है। एक ऐसा साधारण और स्थानीय उत्पाद जो अपने स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता है। सिलेयन रंगन कहते हैं,
4: Quand pour moi le Mauricien, c'est la tradition quoi, parce que nous l'économie, il commence à.
1: गन्ना मॉरिशियनों के लिए एक परंपरा है। हमारी अर्थव्यवस्था इसी से शुरू हुई। आज लोगों के पास गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर चूसने का समय नहीं है, इसलिए कई लोग यहाँ आते हैं और गन्ने का रस खरीदते हैं। गन्ने से नए उत्पाद बनाने की संभावनाएं भी बहुत है। गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ खाद्य उत्पादों में ही नहीं बल्कि सौंदर्य प्रसाधनों, रम के उत्पादन और चीनी की अलग अलग किस्मों के लिए भी किया जाता है। ये उत्पाद मॉरिशियनों के साथ साथ विदेशियों को भी पसंद आ रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये मॉरिशस की विरासत और स्थानीय हुनर को जानने का एक तरीका है। मारिया गोमेज कहती हैं, स्पेन में दो किस्म के गन्ने हैं, एक ज्यादा गहरे रंग का होता है। यहाँ ये सब देखकर आश्चर्य हुआ। इस कच्चे माल से नए और अलग उत्पाद तैयार करके ये कंपनियां मॉरिशस के इतिहास में गहराई से जुड़ी इस पारंपरिक कला और हुनर को आज भी जीवित रख रही हैं।
3: पोटली में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फोबियाविल कलेक्शन की अर्ध प्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण इथनोग्राफिक कलेक्शन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय सेवरी म्यूजियम में मात्र 3 मूर्तियां प्रदर्शित हैं। जानकारी जब जो बाकी के 50 पीस हैं वे अभी फ्रांस में रखे गए हैं। उन्हें 2027 तक यहां लाने की योजना बनाई गई है। गुलामों के व्यापार और दास्ता उन्मूलन की याद में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: 23 अगस्त को हर साल गुलामी के व्यापार और उसके खत्म होने की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है। ये दिन गुलामी के दौरान लोगों की तकलीफ और आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई को याद करने के लिए है। इस दिन की शुरुआत 22 और 23 अगस्त 1791 की रात सेंडोमैंग में हुई बगावत की याद से जुड़ी है। सेंडोमैंग आज हैती है। ये बगावत गुलामी के लिए लोगों को अफ्रीका से दूसरे देशों में ले जाने की प्रथा को खत्म करने की लड़ाई में एक अहम मोड़ थी। मॉरिशस के लिए भी इस दिन की खास अहमियत है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास गुलामी के दौर से जुड़ा हुआ है। मॉरिशस में गुलामी के दौरान लाए गए लोगों और उनके वंशजों ने देश के समाज और इतिहास को गहरा असर दिया। ये दिन गुलामी के शिकार हुए लोगों को याद करने के साथ साथ उन महिलाओं एवं पुरुषों के साहस और आजादी के लिए उनके संघर्ष को सम्मान देने का दिन है। गुलामी के दौर की कई कहानियां और लोगों की पहचान इतिहास के पुराने दस्तावेजों में पूरी तरह दर्ज नहीं हुई, इसलिए उनकी कहानियों को याद रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मॉरिशस में म्यूजे दे लेस्क्लावाज इंटरकॉन्टिनेंटल भी गुलामी के इतिहास को समझने और उसकी याद को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाता है। ट्रास इंटरनेशनल पत्रिका का दूसरा संस्करण इसी इतिहास के एक अहम पहलू यानी गुलामी के दौर की औरतों पर रोशनी डालता है। 23 अगस्त का ये दिन हमें याद दिलाता है कि गुलामी सिर्फ बीते हुए इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका असर आज भी समाज और लोगों की यादों में मौजूद है। इस इतिहास को समझना और याद रखना हमारी जिम्मेदारी है।
3: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन में बचावकर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग मॉल के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं। केवी रेह में दो ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। 4 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव अभियान अगले 2 दिनों तक चल सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस मामले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। अब चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद पश्चिमी इलाके और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिराएंगे, हल्की बारिश हो सकती है, रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं और बारिश होती रहेगी। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:59 पर होगा।

देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग तकनीकी पर फैजल का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। शोक समाचार सुनिए। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रानी डेजी सिबन जो आरती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे उनकी माँ चिंता सिबालक के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। नंबर 17 एवेनो गानाचन कॉन्यूलफ पोटली में सत्ताईस साल के जनाब यहिया हसम इब्राहिम

0: petit chemin bel air mais petit chemin bel air mais 84 साल की 84 years old की श्रीमती देवंती रतिया, श्रीमती देवंती रतिया पहला शिनामल कोरी और जो कृष्णावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके बेटे राजा राम रतिया के मकान पेचिशो में बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Tracks with Radio Musty. सात बजकर 6 मिनट हो चुके हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को. सुप्रभात. अब सूरज भी पूरी तरह से निकल आया है. सुबह का जो हल्का सा अंधेरा था ना, वो अब रोशनी में बदल गया है. मौसम भी एकदम बढ़िया, ना ज़्यादा गर्मी ना कोई चलती, बस एकदम सन्नी वैली फील. और इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत हुई कबीरा नैना के साथ. आज संडे है तो जिन लोगों ने अपने लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं, कुछ सोच रखा है, बस उन प्लान्स को पूरा करने के लिए समय आप निकालिए. कोई फैमिली के साथ बाहर जा रहा है, कोई दोस्तों के साथ मिलने वाला है, कोई घर पर ही आराम करेगा और कई लोग आज गंगा तालाब की ओर प्रस्थान करेंगे. श्रावण मास चल रहा है तो माहौल भी कुछ अलग ही है. हर तरफ शिवमय वातावरण, भक्ति और महादेव का नाम. कई भक्त रात के समय भी गंगा तालाब जाते हैं अपनी आस्था के साथ पूरी रात का सफर करके. तो आज जो भी आपने सोचा है बस दिल से कीजिए. संडे है, मौसम अच्छा है और दिन आपका है. मैं हूँ आपके साथ आपके रिया और आप सुन रहे हैं चिलैक्स, द थर्ड आवर ऑफ चिलैक्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती. चलिए संडे को बिना किसी जल्दी के अच्छे म्यूजिक और अच्छी बातों के साथ हम एंजॉय करते हैं. और नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Tracks with Radio Musty.
1: ट्रैक्स शो में हमारा जो मोटो है ये है टू ट्रिल एंड टू रिलैक्स। यही हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप चिलैक्स करें हमारे साथ इन गानों के साथ, लेकिन इसे और भी दिलचस्प बनाने के लिए हम कुछ और भी लेकर आते हैं, जैसे कि गेम्स एंड ऑल। तो यहाँ पर हम एक गेम लेकर आए हैं आपके नाम, सो यू जस्ट हैव टू प्ले विद एमबीसी, और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है टू एंट्री टिकट टू असिस्ट कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबानी एट क्विडा आर्ट्स सेंटर, a 90-minute dance theater production celebrating the journey of Kathak from its origins as a classical storytelling tradition to its iconic presence in Bollywood and Indian cinema. A vibrant mix of dance, music, cinema and storytelling, bringing together classical tradition and Bollywood nostalgia.

0: क्यूरेटेड एंड डायरेक्टेड बाय विदुषी अर्पिता बैनर्जी. सो ये हैपन हो रहा है एट कुडो आर्ट्स सेंटर ऑन सैटरडे 29th August 2026 at 19:30 and Sunday 30th of August 2026 at 6 PM. तो चलिए हम बॉलीवुड क्वेश्चन ही लेकर आते हैं आपके नाम एंड बहुत ही सरल यहाँ पर हम प्रश्न लेकर आए हैं. सो बताइए हमें कि फिल्म आजा नचले में माधुरी दीक्षित के किरदार दिया को किस शहर में अपना पुराना थिएटर बचाने के लिए वापस आना पड़ता है. फिल्म आजा नचले में माधुरी दीक्षित के किरदार दिया को किस शहर में अपना पुराना थिएटर बचाने के लिए वापस आना पड़ता है. सही जवाब 1549-91294 और पूरे नाम और पूरे पते के साथ भेजना भूलेगा नहीं. चलिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

Tracks with Radio Musty. चलिए जी, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, बहुत ही आसान था। फिल्म आशा नस्ले में माधुरी दीक्षित के किरदार दिया को किस शहर में अपना पुराना थिएटर बचाने के लिए वापस आना पड़ता है? एंड सही जवाब है शामली। वैसे कई लोगों ने अजंता कहा है, लेकिन अजंता थिएटर का नाम था। एंड यहाँ पर हमने शहर का नाम पूछा, एंड दैट्स शामली। वेल, काफ़ी सारे सही जवाब मिले हमें, लेकिन एज यू नो एक ही लकी विनर चाहिए। लकी विनर हमारी बन चुकी है प्रीतिमा आपादू। आप हैं रोशनवासी, सो कंग्रेचुलेशंस आपको। आपने खेला है MBC के साथ और इसी के चलते आपको मिल रहा है 2 एंट्री टिकट्स टू असिस्ट कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबानी एट गुड आर्ट्स सेंटर 90 मिनट डांस थिएटर प्रोडक्शन सेलिब्रेटिंग द जर्नी ऑफ कथक फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स एज अ क्लासिकल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन टू इट्स आइकॉनिक प्रेजेंस इन बॉलीवुड एंड इंडियन सिनेमा। इट्स अ वाइब्रेंट मिक्स ऑफ डांस म्यूजिक सिनेमा एंड स्टोरी टेलिंग ब्रिंगिंग टुगेदर क्लासिकल ट्रेडिशन एंड बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया। क्यूरेटेड एंड डायरेक्टेड बाय विदुषी अर्पिता बैनर्जी और इट्स हैपनिंग एट कुडा आर्ट सेंटर ऑन सैटरडे 29th of August 2026 एट 7:30 PM एंड संडे 30th of August 2026 एट 6 PM। आपको ये भी बता दें दैट ये वाउचर यानी कि ये एंट्री टिकट आपको कलेक्ट करना है एट MBC, तो आप अपने ID के साथ आ सकती है MBC, वीकडेज में आ सकती है सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। यू कैन कम विद योर ID एंड अपना एंट्री टिकट आप ले जा सकती है। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं जीत पाए दिल छोटा ना करें, क्योंकि आपकी बारी भी ज़रूर आएगी।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: घड़ी मनाते चलिए एग्जैक्टली 7:30 बज रहे हैं और संडे सुबह लेकर आ गए हैं चटपटे स्पोर्ट्स खबरें विकास जी, तो चलिए सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको।
4: नमस्कार रिया, ने वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। रविवार की सुबह सबके लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ ये स्पोर्ट्स बुलेटिन शुरू करते हैं। हालांकि इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले मैच में ही बवाल मच गया, सवाल खड़ा हो गया और पैसा न बोल पाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटेनहम हॉटस्पर की बोलती बंद हो गई, फुटबॉल की खूबसूरती वापस आ गई। किंतु सबसे पहले हमारी मॉरिशन चैंपियन किमलेकू डेपिना को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। टू ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के चौथे एवं पूर्वांतिम पेनल्टीमेट चरण में कल किम ने तीसरा स्थान पाकर अपना ग्रीन जर्सी यानी लीडर का पद बरकरार रखा, संभाले रखा। वो अभी भी अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी लियान लिपर्ट से 24 सेकंड आगे है, यानी एडवांटेज किम। आज की आखिरी रेस 123.3 किलोमीटर की होगी, जो मॉरिशन समय अनुसार दिन के 2 बजे आरंभ होगी। किम को चाहिए आपका सपोर्ट, आपका समर्थन, आपका सहारा। इसलिए किमलेकू डेपिना जनरल रैंकिंग में क्लासिफिकेशन में लियान लिपर्ट से 24 सेकंड आगे है। आज ये रेस शुरू करेगी और आज शाम ब्रिटेन में ये प्रतियोगिता जीतकर वो इतिहास रच सकती है। इसलिए कम ऑन किम, कम ऑन मॉरिशस। इंग्लिश फुटबॉल सीजन शुरू हुआ पर सवाल खड़ा हो गया कि हुआ तो हुआ पर कैसे हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल भूत अपने भूत बंगले में छुप गए, तो टोटेनहम हॉटस्पर अपने ढेर सारे पैसों के साथ इस बार बोल न पाए। इट्स रोड टू हेल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। हल सिटी ने उसे 2-0 से हराया, यानी हल ढूंढते ढूंढते हलचल मच गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 हल सिटी 2। हल सिटी ने 9 साल बाद प्रीमियर लीग में अपनी वापसी की और मैनचेस्टर यूनाइटेड को छठी का दूध याद दिला दिया। हल सिटी ने यूनाइटेड को कल के पहले मुकाबले में अर्ली किक ऑफ में अर्ली झटका दिया और इस प्रकार कल हल सिटी की जीत हुई 2-0 से। पहला गोल खेल के 17वें मिनट पर सेमी अजाई का एक पहला गोल। ये बंदा अफ्रीका का शेर है और एकदम हार्ड रॉक डिफेंडर। डिफेंस को तोड़ते हुए उसने पहला गोल स्कोर किया 17वें मिनट पर। फिर 10 मिनट बाद 38वें मिनट पर एक और डिफेंडर नोबेल मेंडी ने दूसरा गोल स्कोर किया, दूसरी कील ठोंकी। हल सिटी 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 प्रीमियर लीग में अपनी वापसी की है और जीत भी हासिल की। मार्कस राशफोर्ड को भी खेलने का मौका मिला 2 साल बाद, फिर भी मैदान पे थरथरी। योगी चेलमांस सांतोस आदि भी आए लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। हल सिटी इन ड्रीम लैंड तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इन ट्रबल्ड लैंड। और कल के आखिरी मैच में ब्रेंटफोर्ड ने टोटेनहम हॉटस्पर को तोते तोते 3-0 से तोड़ा, यानी ब्रेंटफोर्ड 3 टोटेनहम हॉटस्पर 0। खेल के 12वें मिनट पर कीन लेविस पॉटर का पहला गोल। विटाली जानेल ने 33वें मिनट पर दूसरा गोल स्कोर किया। माइकल कायोदे का एक तीसरा गोल सेकंड हाफ की शुरुआत में ही 49वें मिनट पर। और पते की बात यह है कि 55वें मिनट पर ईगो चागो ने एक पेनाल्टी मिस भी की, अन्यथा ब्रेंटफोर्ड कई और गोल स्कोर कर सकता था। सो ब्रेंटफोर्ड 3 टोटेनहम हॉटस्पर 0। हालांकि टोटेनहम ने काफी पैसे खर्च किए हैं, काफी इन्वेस्टमेंट किया है नए खिलाड़ियों पर। रॉबर्ट

0: डेजे अभी कल मैदान पे एकदम नाखुश, लेकिन ब्रेंटफोर्ड ने उसे तोड़ दिया टोटेनहम हॉटस्पर को 3-0 से। बाकी मैचों में नॉटिंघम फॉरेस्ट 0 लीड्स यूनाइटेड 1, गोल कर्टेसी ऑफ एंटन स्टैक खेल के 88th मिनट पर इपस्विच टाउन ने अपनी वापसी करते हुए संडरलैंड को 2-1 से हराया। एमेसन और जैक क्लॉक के गोल इधर से, नीलसन अंगुलो का एक गोल संडरलैंड की ओर से, और एवर्टन ने अपना ये वर्तमान कैंपेन 2-0 की जीत से आरंभ किया। एवर्टन 2 क्रिस्टल पैलेस 0, किलमन ड्रूसबरी हॉल और चियानो बैरी का एक एक गोल द टॉफीज के लिए। एवर्टन 2 क्रिस्टल पैलेस 0। बाकी 3 मैच आज खेले जाएंगे। आज शाम 5 बजे ब्राइटन का मुकाबला एस्टन विला से। द विलियंस ने लियोन गोरेट्स्का को भी हासिल कर लिया है। गोरेट्स्का 31 साल का है और वो बायर्न म्यूनिख से एकदम फ्रीली आ गया है। आज उसका मेडिकल भी पूरा होगा विला पार्क में। सो आज शाम 5 बजे ब्राइटन वर्सेस एस्टन विला। उसी समय मैनचेस्टर सिटी अपने नए चेहरे के साथ, नए कोच के साथ बोर्नमुथ का सामना करेगी अपने होम मैदान एतिहाद में। और आज रात 7:30 बजे सेंट जेम्सेस पार्क में महामुकाबला बिटवीन न्यूकासल यूनाइटेड एंड लिवरपूल आज रात 7:30 बजे। इस सप्ताह का आखिरी मुकाबला सोमवार रात 11 बजे खेला जाएगा, फुलहम और चेल्सी के बीच। शाबी अलोंजो अपनी वापसी की तैयारी कर रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। बढ़ते हैं स्पेन की लालिगा की ओर, जिसके अंतर्गत अपने पहले ही मैच में यूजे मुरीनो ने जीत हासिल की। 13 साल बाद मुरीनो वापस आया और रियल मैड्रिड को स्पैनियोल के मैदान में 2-1 से जीत दिलाई। और ये आखिरी गोल इंजुरी टाइम में जाकर उसके नए खिलाड़ी कार्लोस एस्पी ने स्कोर किया। इससे पहले 9वीं मिनट पर जूड बेलिंगम का एक पहला गोल। स्पैनियोल 1 रियल मैड्रिड 2, वेलेंशिया 0 सेल्टा वीगो 0, एथलेटिक 1 सेविलिया 3। आज रात बार्सिलोना अपनी एंट्री मार रहा है। इटली का सीरिया भी कल ही आरंभ हुआ। चैंपियन टीम इंटर मिलान ने मोन्जा को 4-1 से खाया। पियोत्र ज़ेलिंस्की, पियो एस्पोजिटो और यान बिसेक के बाद हकान कान्हानोग्लू को एक पहला गोल। इंटर मिलान 4 मोन्जा 1, उदिनेजे 1 कोमो 1, जेनोवा 0 नापोली 2, पामा 0 कागलियारी 1। आज रात यूवेंटुस और एसी मिलान अपना अपना मैच खेलने उतर रहे हैं। फ्रांस के लीग 1 में कल रेसिंग क्लब दे लांस ने ओसिया को 5-2 से हराया। लेमन 2 ब्रेस्ट 2, निस 0 लोरियन 0, टुलू 0 ओलंपिक दे लियों 2, नोआ नाटे और मलिक फोफाना का एक एक गोल लियों के लिए, और 3-0 पारी एफसी 0। आज रात चैंपियन टीम पेरिस सेंट जर्मेन मैदान पे उतर रही है। इतना सब कुछ फुटबॉल को लेकर। ट्रांसफर बाजार खुला हुआ है, 1 सितंबर को बंद होगा। अभी भी खरीदारी जारी है, कई खिलाड़ियों का आना जाना, पैसों की खनखन छनछन, लेकिन फुटबॉल एकदम कम। बात करें अब फॉर्मूला 1 मोटो रेसिंग चैंपियनशिप की, जिसके आखिरी स्प्रिंट में कल लैंडो नोरिस की जीत हुई। वो आज ये डच ग्रां प्री पोल पोजीशन से आरंभ करेगा। बता दें कि जनरल क्लासिफिकेशन में किमी एंटोनेली अभी भी पहले स्थान पर हैं 224 अंकों के साथ। दूसरे स्थान पर है लेविस हैमिल्टन, जो 53 अंक पीछे 171 अंक लिए दूसरे स्थान पर है, जबकि जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर है 168 अंकों के साथ। और लैंडो नोरिस ने 5वां स्थान अब तक हासिल किया हुआ, उसके पास है 134 अंक। फिर स्थानीय तौर पर बता दें कि आईसीई क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 अभी तक जारी है। कल के मात्र मैच में कैंपस अब्रोड लायंस ने एपीपी लेपर्ड्स को 27-27 रनों से परास्त किया। मैन ऑफ द मैच बना विद्या सागर। और आज सुबह 9 बजे मापू स्थित एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड में एएमजी पैंथर्स का मुकाबला कॉन्टिनेंटल चीता से है, जबकि दिन के 1 बजे कैंपस अब्रोड लायंस फिर मैदान पर उतरेंगे, इस बार वन हेल्फ जागुअर्स के विरुद्ध। क्षेत्रीय फुटबॉल में पिछी गाफे में आज एक वीकेंड फुटबॉल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। दोपहर 3 बजे यंग टाइगर्स का मुकाबला टीबीएस एफसी से, और 4:30 बजे आज ही पिछी गाफे वेटेरों का मुकाबला सैटरडी रोवर्स से है, जबकि रोशनोआ दुदला बीमा सुवेनिया कप के अंतर्गत आज शाम 3:30 बजे वहीं के मैदान पे स्काईलॉक एफसी का मुकाबला सिलेक्शन कोटेज से है। सुबह के 7:40 और 4 सेकंड विकास रामधनी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी, शुभ दिन आपको भी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो।

0: Chillax with Radio Masti.
1: संडे की एक और खास बात होती है, दैट इज योर फैमिली टाइम। पूरे हफ्ते घर में सबकी अपनी अपनी भाग दौड़ होती है, किसी का ऑफिस, किसी का स्कूल, किसी का काम, और कभी कभी एक ही घर में रहकर भी लोग प्रॉपरली बात नहीं कर पाते। लेकिन संडे थोड़ा मौका दे ही देता है एक साथ ब्रेकफास्ट करने का, टीवी के सामने बैठने का, किसी पुरानी बात को याद करके हंसने का, या फिर बस बिना किसी खास वजह के एक साथ बैठने का। और घर में अगर कोई बड़ा है, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, तो उनके साथ आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर बिताइए। उनकी कचोरी सी बात भी कभी कभी पूरे दिन की याद बन जाती है। और जो लोग घर से दूर है, उनके लिए संडे का एक फ़ोन कॉल तो बनता है ना, कैसे हो, क्या करे हो, खाना खाया, बस इतनी सी बात, लेकिन सामने वाला का दिन फुल बन जाता है। तो आज संडे को सिर्फ अपने प्लान्स का दिन मत बनाएं, अपनों के नाम भी थोड़ा सा समय आप दीजिए। एंड यस, यहाँ पर हमारी बातें को हम विराम देंगे क्योंकि समय भी तो हो चला है जाने का। जी हाँ, अभी तो हम विदा लेंगे। एंड जाने से पहले विशिंग यू ऑल अ हैप्पी संडे। आपका ये रविवार बहुत ही अच्छा जाए एंड आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। वेल, जाने से पहले एक और मैसेज यहाँ पर आ गया है, तो हम विश करेंगे मंजू जी को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप है पिछले हफ्ते से और आज अपना जन्मदिन मना रही है, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस फ्रॉम योर ब्यूटीफुल डॉटर श्रीदी, आपके पति है एंड द होल देसी ट्रेंड परिवार, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। दैट वाज योर चिलैक्स शो रिया के साथ एंड दैट्स मी सेइंग बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। टेक केयर।
0: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुना जा। नौजवान लोग के मानसिक स्थिति के लेके कई गो सवाल खड़ा होत बाटे। कई दिन आगे 14 बरिस के एगो किशोर पुतगो दो में अपन सौतेला पिता के भाई के मुआ देला। कार्यकर बाद एगो स्कूल में ग्रेड 6 के एगो लड़का छलांग लगा के गिर गल आर ओकरा ढेर घाव लगल। इस सब से हमनी के एगो सवाल थड़ा हुआ बाटे कि का हमनी अपन लड़का लोग के आर किशोर लोग के परिस्थिति के बारे में जानी ला जा के नहीं। शिक्षा मंत्री के अनुसार इस सब के पाछे मानसिक तनाव, पारिवारिक कठिनाई, सामाजिक दबाव, भावनात्मक पीड़ा इस सब कारण हो सकेला। मंत्री बोलन कि छात्र लोग के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व दे के चाहिए और युवा लोग के मनोवैज्ञानिक स्थिति के समझे के कोशिश करल जाए के चाहिए। उ लोग के सुरक्षा और स्कूल में सुरक्षा के लेके विचार करल जात बाटे। गल 18 महीना में मॉरिशस में कैंसर के 60 से अधिक जटिल यानी कठिन मामला के उपचार विदेश से आवल स्पेशलिस्ट सर्जन लोग करलन सब। ई पहल से ऐसन मरीज के देश वे में अपन इलाज मिलत बाटे जिनकरा ढेर ऑपरेशन खातिर विदेश जाए के पड़त। बखिर अब एकर इलाज मॉरिशस वे में होल बाटे। इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीम के विशेषज्ञता मिली, अनुभव मिली यारी। एकर से जोन जोन मरीज के विदेश जाए के रहल उ लोग के अब हो जा नहीं जाए के पड़ी। पोर्टली के इंटर कॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम में 33 गो प्रतिमा प्रदर्शित करल गल है। ई 1846 में मॉरिशस में बनावल गल 53 प्लास्टर के प्रतिरूप बाटे जे गुलाम लोग के चेहरा से बनावल गल रहल। आवत बरिस लेक हौजा से जुन 50 गो प्रतिमा बाकी बाटे ओकरा हैजा परी आन के ओ म्यूजियम में प्रदर्शित करे के योजना बनावल जात बाटे। विदेश के खबर में यूक्रेन में एगो शॉपिंग मॉल में दूगो ड्रोन हमला में मरे होला जना के संख्या 16 पार कर गल बाटे और 130 जना के घाव लगल बाटे। हौजा परी 4 गो जना के लापता हो के खबर मिलल बाटे जेकरा खोज निकाले खातिर बचाव टीम काम करत बाटे। आर 2 दिन ले हौजा परी बचाव आरी तलाशी अभियान जारी रखल जाए। हौजा के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ई घटना के शर्मनाक बतैलन। तय रहल संक्षिप्त समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की याद याद दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: Express तड़का
1: RM2
2: दामाद बाबू को ही पूछना पड़ेगा आप तो वही हेल्प कर पाएंगे लेकिन चलिए विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग आपका हम वार्म वेलकम कर रहे हैं सुबह के 8:08 संडे मॉर्निंग 23rd of August लेकर आए हैं आपके लिए टाइमलेस तड़का दोस्तों मैं हूं परी आपके साथ गुड मॉर्निंग विशेस के साथ इस ब्यूटीफुल संडे को वेलकम करते हैं और सुबह सवेरे ये जो हल्की हल्की धूप है ये जो ब्यूटीफुल मॉर्निंग की शुरुआत है इसे तो बस संडे ही एंजॉय करने मिलता है वरना तो हर दिन भाग दौड़ में कौन सा मौसम कैसा कहां ही कुछ पता लगता है लेकिन आज का दिन है खास बिकॉज आज है आपकी छुट्टी का दिन सो मेक इट स्पेशल वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं इन योर टाइमलेस तड़का और आज का दिन यानी कि 23rd of August अगर आपके लिए है खास कोई सेलिब्रेट कर रहा है अपना बर्थडे किसी की वेडिंग एनिवर्सरी या फिर आज का दिन ऐसे ही आपको अच्छा अच्छा लग रहा है अपनों के लिए एक स्वीट सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सो नंबर वही है 5499 1294 वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल सेगमेंट्स और मॉर्निंग में कुछ अच्छे गाने आपके लिए हम प्ले करेंगे That's your timeless tadka. Abhi ke liye jante hain kaisa rahega mausam ka haal on this 23rd of August.
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
2: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह धूप खिली रहेगी दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे हल्की बारिश भी हो सकती है रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 और अधिकतम 22 से 24 जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ शाम को सूर्यास्त 5:59 पर होगा
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
4: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Les 200 ml de Cod Liver Oil Scott's Emulsion Orange Flavor à 199,95 € et la boîte de 700 g de Régilé écrémé Vitamilk à 499,95 €. Faites le plein de fraîcheur, de saveur.

0: Shameless Tadka.
1: RM2.
2: वेल दोस्तों, गानों से तो हमेशा से ही प्यार रहा है. गाने हर दौर में डिफरेंट मैजिक फैलाते रहे हैं. और बी इट द मैजिक ऑफ 50s, बी द मैजिक ऑफ 60s, 70s, 80s, 90s या फिर मिलेनियल के बाद जो थोड़ा सा गानों में बदलाव आया, हर एक दौर का अपना ही एक मैजिक था. एंड वेल, यहाँ पर ये मैजिक हम आप तक पहुँचा रहे हैं. थ्रू म्यूजिक हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपका और हमारा ये साथ बना रहता है ऑन 5499-1294. चलिए, सो संडे विशेस के साथ आए हैं हमारे कुछ डियर लिसनर्स. और यहाँ पर विजया जी कहती हैं कि आज लिटिल सिस्टर केशनी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, सो विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. विशेस कमिंग फ्रॉम समायरा, आतिश एंड विजया. और आपकी सिस्टर केशनी को हमारी पूरी टीम की ओर से गुडी गुड विशेस ऑन हर स्पेशल डे. सो हैव अ ग्रेट वन केशनी. आपका जन्मदिन है आज ऑन 23rd of August, सो हैव अ ग्रेट वन एंड बहुत सारा प्यार आपके लिए. श्याम देवचन अपनी गर्मा गर्म इलायची चाय और गानों का लुत्फ उठा रहे हैं ऑन दिस संडे मॉर्निंग. परफेक्ट स्लो स्टार्ट एंड बस अगला गाना आपके नाम. विश करेंगे आपको हैप्पी हैप्पी संडे. साथ जुड़ चुके हैं श्यामा, रितेश, रानी, आदर्श, नियान, निष्ठा, जयश्री, युषरा, वशिष, याशना एंड सभी जीवन परिवार ऑफ बेले. और कहते हैं गाना गोज आउट फॉर द एंटायर क्रू ऑफ रेडियो मस्ती. दैट्स रियली स्वीट. हमारे लिए तो कभी कभार डेडिकेशन आते हैं लेकिन आपने हमारे बारे में सोचा, दैट्स रियली स्पेशल. थैंक यू. और हमारी ओर से एक स्वीट सा गाना आपके नाम एंड विशिंग यू गुड मॉर्निंग. सुबह सवेरे कॉफी की फोटो, ओ हो हो क्या बात है, बन गई है हमारी मॉर्निंग एकदम मस्त सी. थैंक यू सो मच यलेश फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज. साथ दे रहे हैं आप, सो गाना होगा फॉर यू फॉर शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम. साथ ही आप हैप्पी संडे विश कर रहे हैं सभी रेडियो मस्ती टीम को एंड सुरिनाम से सभी परिवार के नाम. डेडिकेटिंग एक ब्यूटीफुल गाना. थैंक यू जी, मीन्स अ लॉट. साथ ही यहाँ पर ललिता जी आप भी जुड़ गई हैं, ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं सी साइड. क्या बात है, अर्ली मॉर्निंग एंड विटामिन सी काफी जरूरी होता है पूरे हफ्ते को रिचार्ज करने के लिए. एक दिन तो ऐसा बनता है जहां पर आप रिलैक्स चिलैक्स कर सके. सो चलिए ललिता जी, गाना आपके नाम सी साइड से हमें सुन रही है. सो गाना फॉर यू एंड फॉर ऑल जीतन फैमिली ऑफ लावॉन्चर. ऑल द वे फ्रॉम फ्लैक अपना प्यार लेकर आई हैं हमारी प्यारी सी झाना जी. कहती हैं बातों को सुनते हुए एंजॉय कर रही हूँ रेडियो मस्ती के गाने और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना पूरे परिवार के नाम. रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, युवी, कृषि, सिरसरन परिवार फ्रॉम फ्लैक हमारे साथ जुड़ गए हैं आप. सो गुड मॉर्निंग, दिस वन गोज आउट फॉर यू ऑल. सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बस आपके लिए गुड म्यूजिक हम पहुंचा रहे हैं. दैट्स योर टाइमलेस तड़का. सो लेकर जाएंगे आपको डाउन मेमोरी लेन और साथ ही होंगे कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एज वेल. बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ टिल 11 AM.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: एंड वेल फ्रेंड्स, कभी कभार अगर लाइफ स्लो डाउन हो जाए तो घबराइए मत. हर डिले जो है वो डिनायल नहीं होता. समटाइम्स लाइफ इज सिंपली प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बेटर. बस पेशेंस रखिए, फेथ रखिए और अपनी पॉजिटिविटी को किसी भी सिचुएशन से बढ़ा रखिए.
0: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: RM2
6: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
4: So well, that was a quote of the day आपके लिए. जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी हमारे प्लान्स के हिसाब से कहाँ चलती है दोस्तों. शायद उसकी खूबसूरती यानी कि ज़िंदगी खूबसूरती इसी में है जो बदल नहीं सकते. उसे हमें एक्सेप्ट करना है और जो मिला है उसकी कदर करनी है एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ, ग्रेस एंड अ ग्रेटफुल हार्ट. अभी के लिए तो हम भी ग्रेटफुल है कि आपका साथ, आपका प्यार हमें मिला है. मॉर्निंग टाइम में आपके लिए लेकर आए हैं टाइमलेस तड़का. मैं हूँ परी आपके साथ. फॉर नाउ सोनू निगम की मैजिकल वॉइस, ये गाना आप सभी के नाम. गुड मॉर्निंग.

0: RM2 Radio Musti.
1: So, well, it's 8:56 और इसी ट्रैक के साथ बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. आप भी साथ दीजिए, दैट्स योर टाइमलेस तड़का. लौट कर आएंगे विद सम मोर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. आपका साथ, आपका प्यार ऑन रेडियो मस्ती, और मैं हूं परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक.

0: सुबह के ठीक 9 बजे है देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार पुदगदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मौत के मामले में शामिल हुआ इसके कुछ ही दिन बाद जुल के नेक गवर्नमेंट स्कूल की ग्रेड 6 की एक छात्रा ने

0: कूद कर गिर गई। जारी जांच के नतीजों पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना इन घटनाओं ने एक अहम सवाल खड़ा किया है, क्या हम जानते हैं कि हमारे बच्चे और नाबालिग किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कुछ बर्तावों के पीछे कभी कभी मानसिक परेशानी, पारिवारिक समस्या, सामाजिक दबाव या भावनात्मक पीड़ा छिपी हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत पर जोर दिया। पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में लगभग 60 जटिल चिकित्सा मामलों यानी कॉम्प्लेक्स मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में संभव हो पाया जिन्हें इलाज स्पेशलाइज्ड इलाज की जरूरत थी। साथ ही सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिला। इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत को कम करना और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को मजबूत करना है। पोटवी में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रोबविल कलेक्शन की अर्ध प्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये मॉरिशस में गुलामों के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्लेवरी म्यूजियम में मात्र 3 मूर्तियां प्रदर्शित हैं जबकि बाकी के 50 बस्त को फ्रांस में रखा गया है। 2027 तक यहाँ लाए जाएंगे। गुलामों के व्यापार और दास्ता उन्मूलन की याद में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विदेश की खबरों में यूक्रेन में बचाव कर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग मॉल के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं। कीव ये रिह इलाके में 2 ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हुई है जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार। ला म्यूसले नोवेल फ्रांस में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री करमवीर पुरन जो उद्धू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान ला म्यूसले नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिशानी रोसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देजी रानी सिबन जो आरती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:30 उनकी माँ चिंता सिबालक के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। Chemin Parasol, Montfertil, New Grove, 66 साल की 66 years old की Mrs. B.B. Fatemun Subrati, पैदाशी नाम रजी और जो फातेमुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा सुबह 10:00 उनके शौहर सुभाची गोहाबाई के मकान शुमे पारासल मोफियाचिल न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। अवेन्यू दे पेट्रेल मेडिन कॉन्डमास्क में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की मिसिज फिरोजा बीबी ओमिरुडू पैराशी नाम नसराली और जो फिरोजा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके बेटे मोहम्मद बिलाल ओमिरू जी के मकान एवेन्यू डी पिथैल मेदिन कॉन्डमास्क से उठाकर दफनाने के लिए कॉन्डमास्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Radio.TV. North, South, East, or West. Tune into the very best.

0: Bez Tarka.
1: RM2.
2: So well, that's your timeless tarka and यहाँ पर गाने तो चलते रहेंगे वैसे तो 24/7 आपके लिए गाने चलते रहते हैं सुबह 5 से लेकर रात तक देर रात तक या फिर

कह सकते हैं 24/7 आपके साथ different kind of music यानी कि सुबह कुछ अलग गाने दोपहर में कुछ अलग गाने रात को कुछ अलग गाने best mix of music आपके लिए हम लेकर आते हैं because we understand कि हर किसी की music choice अलग होती है हर किसी के पास अपना एक special song जरूर होता है और क्या पता हमारी playlist में वो गाना चल जाए जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी और बढ़ा दे so good morning wishes लेकर आए हैं यहाँ पर हमारे dear listeners हमारी प्यारी सी आरती जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं sweet sweet good morning आपको और हम भी wish करते हैं that may your day be filled with the happiness love and positivity हंसती रहिए मुस्कुराती रहिए स्वस्थ रहिए और बस हमारा प्यार आप तक ऐसे ही पहुँचता रहेगा साथ ही यहाँ पर एक स्वीट सा मैसेज टीना की ओर से दैट्स रियली स्वीट टीना थैंक यू सो मच हमारा साथ दे रही हैं आप और मैं तो एकदम मस्त हूँ एंड आई डू होप दैट आपका संडे भी एकदम मस्त जा रहा है कहते हैं हैप्पी संडे टू ऑल माय लव्ड वंस इंक्लूडिंग मी अरे वाह दैट्स सो स्वीट थैंक यू और साथ ही हम भी विश कर रहे हैं कि आप पर महादेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे आप भी हमेशा हैप्पी हैप्पी रहे सो गाना गोज आउट फॉर यू और मॉर्निंग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की पिक्चर्स शेयर कर रही हैं ये है हमारी प्यारी सी लीना जी तो लीना जी थैंक यू जी आप अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हैं एंड इट लुक्स वेरी यमी सो एंजॉय योर ब्रेकफास्ट एंड वी विल प्ले सम गाने आपके ब्रेकफास्ट को और भी एनहांस करने के लिए सभी शाम परिवार सुरनाम से साथ जुड़े हुए हैं सो गाना आप सभी के नाम एक ब्यूटीफुल शायरी लिखते हैं कि अब हर भाई के हाथ पे होगा रंग बिरंगी रेशम का तार भाई बहन का प्यार बढ़ाने आया राखी का त्योहार दिल से देता हूँ मैं दुआ तुझको कभी ना हो दुखी कि भगवान जो भी तेरी उदासी है उसे दूर करे खुशियों की चांदनी छाए जीवन में हमेशा यही विशेष लेकर आए हैं आकाश चेतन मनसुख बॉम्बू से विशिंग गुड मॉर्निंग टू एवरी वन हैप्पी राखी एडवांस विशेष टू ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सभी मनसुख परिवार बॉम्बू से हमारा साथ दे रहे हैं एडवांस विशेष आपने पहुंचाई हैं सो थैंक यू सो मच आकाश गुड विशेष आपके नाम भी और सनी सनी संडे एंजॉय कर रहे हैं हमारे डियर लिसनर आप है रोशनी क्या बात है रोशनी तो आप ही लेकर आई हैं तो हमारी लाइफ में तो उजाला आपके मैसेजेस से ही आ जाता है थैंक यू सो मच रोशनी यू आर लविंग द सिलेक्शन स्पेशली तुम हो तो ये गाना तो आपको एकदम अच्छा लग गया सो बस ऐसे ही प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे साथ देते रहिए ऑन रेडियो मस्ती सीतोहल परिवार हमारा साथ दे रहे हैं आप गाना होगा आपके नाम भी और साथ ही यहाँ पर विश्वानी जी हमारा साथ दे रही हैं आप है विश्वानी बोयरू साथ देने के लिए शुक्रिया वी ऑल्सो हैव आरुष कहते हैं क्या प्यारा सा गाना आप जरूर प्ले करें मेरे नाम भी एंड वेल आरुष वील हैव ब्यूटिफुल सॉन्ग्स कमिंग अप आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं साथ ही यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विशेज आई हैं फॉर नितीश राम दीकल विशेज लेकर आई हैं मॉम मीला उनकी मासी ओशी और साथ में है उनकी सभी उनके सभी परिवार यस सलोनी है लालनी एंड मीला राम दीकल मोटाई ब्लॉन्ड से पहुँचा रही हैं अपना प्यार उन तक ऑन हिज स्पेशल डे हम भी विश करना चाहेंगे उन्हें वेरी हैप्पी बर्थडे प्रमिला जी आप है प्लेन द पपाय से और अगला गाना आप डेडिकेट करना चाहती हैं फॉर मॉम परमावती बोजावन वो भी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं बेस्ट विशेज एंड प्यार ये है सभी परिवार की ओर से टू एवरीवन जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 23rd ऑफ अगस्त दिस वन गोज आउट फॉर यू

0: रेडियो मस्ती
1: एंड वेल ऑन फ्राइडे प्रीतम जी आपने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया सो बेलेटेड बर्थडे विशेस आपके लिए और उम्मीद करते हैं दैट ये साल लेकर आए आपके लिए बहुत सारी खुशियां हैव अ ग्रेट वन आज मिस्टर राकेश आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं विशेस लेकर आई हैं योर लवली वाइफ प्रिया साथ ही विशेस आपके लिए ये है फ्रॉम ऑल गंगाराम परिवार जो आपको विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे स्पेशल विशेस टू ऑल दोस जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन एंड हो ये दिन आपके लिए खास यही हम कामना करते हैं हमारी पूरी टीम सेंडिंग लोड्स ऑफ लव आप सभी के नाम

11 बजे तक ऐसे ही कुछ प्यारे गाने बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती श्वेता हुकुम बुनाका इसे साथ दे रही हैं डेडिकेटिंग दिस वन फॉर योर लवली हबी रोशन ये है उनकी बुबू रानी की ओर से जो उन्हें बहुत प्यार कह रही हैं लव यू सो मच हस्बैंड जी सो आई गेस दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आप दोनों के नाम फॉर एवरीवन कनेक्टेड एंजॉय दिस वन

well, that was in the voice of Daleer Mehndi. ये गाना था आप सभी के लिए, taking you down memory lane. Well, कुछ indie pop भी ऐसे रहे जो हमेशा यादगार बन गए. And 9:52, it's 9:52, और ये हम जानते हैं श्रावण मास के उपलक्ष्य में बहुत सारे हमारे जो भक्तगण हैं वो गंगा तालाब की ओर भी जा रहे हैं. अभी के लिए यहाँ पर पूनम हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं जा रही हूँ गंगा तालाब की ओर विद हस्बैंड जय सिंह, बेटा अंश. अभी के लिए तो नो ट्रैफिक जाम. और सभी डिवोटीज जो जा रहे हैं गंगा तालाब, दिस वन गोज आउट फॉर यू. चलिए, हर हर महादेव के नाद के साथ आप भी गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं, तो ये गाना आपके नाम. जैसे हम कहते हैं फेथ है तो सब कुछ है. सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दैट्स योर टाइम लिस्टर का परी का साथ दिन के 11 बजे तक ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. Din ke 10 baje hain. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया. इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में ही संभव हो पाया जिन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी. साथ ही सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर भी मिला है. इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत को कम करना और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को और मजबूत करना है. बिजली के क्षेत्र में मंत्री पत्रिका सेवादन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई सहायता कंपनी की घोषणा की है. सीबी एनर्जी सोलर पैनल्स के आयात और उन्हें लगाने की जिम्मेदारी संभालेगी. इस कदम का उद्देश्य होम सोलर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाना है. पत्रिका सेवादन कल अयोध्या में मौजूद रहे जहाँ इस परियोजना के फेज 2B से 400 परिवारों को

0: लाभ होगा। इस योजना को यूएनडीपी सहित कई साझेदारों का सहयोग मिल रहा है। श्रावण मास अपने चरम पर है। मात्र एक हफ्ते में ये पावन मास समाप्त हो जाएगा और इसी दिशा में कई लोग गंगा तलाव तक की यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग कांवड़ लेके तो कुछ लोग गाड़ियों में शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। कल वहां पर श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में भक्तों ने गंगा तलाव का दौरा कर वहां पर पूजा किया। और आज वहां पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर एक गणेश मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजा का आयोजन किया जा रहा है। विदेश में यूक्रेन में बचाव कर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग सेंटर के मलबे में बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कीविव री इलाके में दो ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। Avenue de Petrel, Médine Camp de Mascmé, Avenue de Petrel, Médine Camp de Mascmé, 60 साल की 68 years old की मिसिस फिरोजा बीबी ओमिहुदी, मिसिस फिरोजा बीबी ओमिहुदी, पैदाशी नाम नसराली और जो फिरोजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा दिन के 11 बजे उनके बेटे मोहम्मद बिलाल ओमिहुदी के मकान Avenue de Petrel, Médine Camp de Mascmé से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए Médine Camp de Mascmé का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। La Musselée, Nouvelle-France में, La Musselée, Nouvelle-France में 77 साल के 77 years old के श्री करमबीर पुरन, श्री करमवीर पुरन जो उधो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके मकान La Musselée न्यूवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माँ की जानी रोजपेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: तड़का
1: और एम टू
0: टाइमलेस तड़का
2: So well friends, that's your timeless tadka. Welcome kar rahe hain aapka ek baar phir 10:08 Sunday morning aap bhi hamara saath de rahe hain. I do hope weekend aapka ekdam mast ekdam zabardast. Gaano ka saath hum denge yani ki gaane aap tak hum pahunchayenge aapke musical partners. साथ देने के लिए हमारे सभी लिसनर्स का तहे दिल से धन्यवाद और वेल अभी के लिए शान की आवाज़ वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना और थोड़ी ही देर में इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल जहां पर आप जीत पाएंगे एक शानदार इनाम शान एंड कॉन्सर्ट बहुत ही जल्द हम इसे लाइव एक्सपीरियंस करने वाले हैं तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं स्टे कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: सुशांत की आवाज का मैजिक एंड अर्जुन रामपाल का चार्म फ्रॉम द फिल्म प्यार इश्क मोहब्बत ये गाना था आप सभी के लिए चलिए दोस्तों क्लोज योर आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान और अब RM2 रेडियो मस्ती आपको चांस दे रहा है टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक लाइव खेले आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव कॉन्सर्ट वन Voice, one stage, one unforgettable night at SBI CCPI होने वाला है on 5th of September 2026 as from 8 PM proudly organized by ticketbox.mu चलिए अभी के लिए एक सवाल पूछेंगे आपसे एंड अ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन जहां पर सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक प्लैटिनम टिकट सो आपके लिए है सवाल शान जो है यानी कि हमारे जो फेमस सिंगर शान है ये कौन सी कंट्री से है इज इट ए इंडिया बी नेपाल या फिर सी यूनाइटेड किंगडम दैट्स सो इजी सिंपल सा सवाल विच कंट्री इज शान फ्रॉम इज इट ए इंडिया बी नेपाल या फिर सी यूनाइटेड किंगडम आपके सही जवाब 5499-1294 पर 5499-1294 पर वेटिंग फॉर राइट आंसर्स आपके पूरे नाम और पूरे पते के साथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर आप अपना पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे आप अपना पूरा नाम नहीं बताएंगे तो हम आपको कंसिडर नहीं कर पाएंगे सो फुल नेम फुल एड्रेस एंड सेंड मी योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294 All the best. So this one is in the voice of Shan and Style Bhai taking you down memory lane. And सवाल तो वही है. किस country से belong करते हैं Shan? भेजिए आपके सही जवाब 5499-1294 पर.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: तो चलिए यहां पर हमने आपसे पूछा था वेरी सिंपल सा एक सवाल और आपको हमें बताना था दैट व्हिच कंट्री इज शान फ्रॉम इज इट इंडिया नेपाल या फिर यूनाइटेड किंगडम द राइट आंसर इज इंडिया भारत भारत से है शान और यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद कौन बने हैं लकी विनर आप हैं मनीष मीतन ऑफ दागुचे कांग्रेचुलेशंस तो चलिए मनीष जी आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब खेला आपने RM2 रेडियो मस्ती के साथ और जीती है एक प्लैटिनम टिकट जहां पर आप एंजॉय कर पाएंगे स्पेक्टेकुलर शान लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन 5th ऑफ सितंबर एट 8 PM एट SBICC पाए सो चलिए आपको बता दी शान इंडिया के एक बहुत ही बिलवेड प्लेबैक सिंगर है नोन फॉर हिज स्मूथ सोलफुल एंड वर्सेटाइल वॉइस जहां पर 1990s से हमने उनकी आवाज सुनी और बॉलीवुड में उनके कुछ रोमांटिक मेलोडियस गाने हमने एंजॉय किए ओवर द इयर्स शान हैज डिलीवर्ड न्यूमरस मेमोरेबल हिट्स अक्रॉस हिंदी सिनेमा इंडियन पॉप म्यूजिक अर्निंग अ स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशंस उनकी जो वार्म वोकल स्टाइल है एफर्टलेस स्टेज प्रेजेंस है एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस ये उन्हें एक पॉपुलर लाइव परफॉर्मर बनाते हैं सो आप एंजॉय कर सकते हैं उनका कैरिज्मेटिक एनर्जी सोलफुल वॉइस टाइमलेस मेलोडीज ऑफ शान लाइव ऑन 5th ऑफ सितंबर SBICC के स्टेज पर आप इन्हें देख पाएंगे लाइव होने वाला है ये कॉन्सर्ट एज फ्रॉम 8 PM सो तारीख नोट कर लीजिए इट्स 5th ऑफ सितंबर और अभी के लिए लकी विनर बन गए हैं मनीष मीतन जिन्होंने जीती है एक प्लैटिनम टिकट कांग्रेचुलेशंस
0: RM2
1: रेडियो मस्ती
3: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा एक जरूरत नहीं पड़ी काहे की हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली डिजाइनर लहंगा लच्छा साड़ी जोधपुरी क्रॉप टॉप शेरवानी सूट ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में हलकोड़ी फैशन रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने फोन नंबर 5799-3782 हलकोड़ी फैशन परंपरा एलिगेंस और क्वालिटी
4: Shan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pai Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464 Another great event brought to you by Gravity Zero ticketbox.mu your one stop shop for the best events Hotels and flights in Mauritius.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शान कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं जो होने वाला है ऑन 5th of September। एक से बढ़कर एक लाजवाब गानों को हम एंजॉय कर पाएंगे और यहाँ ऑन रेडियो बस उनके कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अभी आपके लिए हम चला रहे हैं। For now, this one goes out for किशन रघुनाथ, सुरनाम से हमारा साथ दे रहे हैं। For your wife माला, आपकी दो प्यारी बेटियां जिया एंड रिया, सभी रघुनाथ परिवार के नाम। We have this beautiful गाना। साथ ही यहाँ पर हैप्पी संडे विशेज और कहती हैं केदारनाथ गाने के लिए थैंक यू सो मच। प्रकाशवती जी हमारा साथ दे रही हैं। आप खुश तो हम भी खुश, बस ऐसे गाने चलाते रहेंगे जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ाते रहें। For now we have two lovely ladies जो हमारा साथ दे रही हैं, दीपशिका एंड प्रिया। That's a beautiful track, आप दोनों के नाम। Wishing you both a happy Sunday, loads of love to you, enjoy this one।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: Timeless Tadka.
0: RM2.
3: और चलिए दोस्तों, अभी के लिए इट्स टाइम फॉर सम फैशन टिप्स जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. कलर पेयरिंग का गोल्डन रूल, एक आउटफिट में दो या तीन कलर से ज्यादा मिक्स एंड मैच मत कीजिए. न्यूट्रल्स लाइक बेज, वाइट, ब्लैक, नेवी एंड ग्रे, ये आपके सेफेस्ट स्टाइल पार्टनर्स है. मोनोक्रोम लुक हमेशा देता है एक पॉलिश्ड अवतार. सो कहते हैं कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जैसे कि क्रीम, बेज, कैमल, अगर इसे आप पेयर करते हैं तो ये इंस्टेंटली क्रिएट करता है एक स्लीक, एक्सपेंसिव एंड एकदम स्टाइलिश लुक. और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि शूज कैन चेंज द एंटायर लुक. सिंपल जीन्स एंड शर्ट को हील्स एलिगेंट बनाता है और स्नीकर्स एफर्टलेस कूल देता है. लोफर्स सोफिस्टिकेटेड देता है एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ फुटवेयर. सो हमेशा गुड फुटवेयर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और जैसे हम कहते हैं, एक्सेसराइज कीजिए लेकिन विद इंटेंशन. हर चीज एक साथ पहनना स्टाइलिंग नहीं होता. चूज वन हीरो एक्सेसरी, मे बी अ स्टाइलिश वॉच, नेकलेस, बेल्ट या फिर इयररिंग. ये आपके लुक को एकदम परफेक्ट बना देता है. एक सिंपल सी एक्सेसरी आपके लुक को एकदम एनहांस कर सकती है. तो ये थे कुछ स्टाइलिंग टिप्स आपके लिए. स्टाइल कीजिए, स्टे स्टाइलिश, स्टे म्यूजिकल. RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
2: Fashion tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.

वेल म्यूजिक के साथ इमोशन होना भी तो जरूरी है. सो म्यूजिक एंड इमोशन आप तक पहुंचाते हैं, यह है आपका अपना रेडियो मस्ती. दोस्तों मॉर्निंग टाइम, दैट्स योर टाइमलेस तड़का, और आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड दैट्स रांझना द टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए. एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ, विशिंग यू ऑल अ म्यूजिकल मॉर्निंग. साथ दे रहे हैं आप टाइमलेस तड़का, मैं हूं परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक.

0: Chris Thodica.
1: RM2.
2: चलिए दोस्तों, इशारा तो हो गया है दैट इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. लेकिन जाते जाते हाउ कैन वी नॉट रीड आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस जो आपने इतने प्यार से पहुंचाए हैं. एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इतने प्यार से पार्टिसिपेट किया. वैसे ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जीतने के मौके और भी मिलेंगे, बस ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए. क्या पता किस दिन आपका लक का जोर कर रहा हो और मिल जाए एक शानदार इनाम आपको. सो वेल वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे विनर को और साथ देने के लिए सभी हमारे लिसनर्स का तहे दिल से धन्यवाद. यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं टीना, हमारा साथ दे रही हैं. आप डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर हस्बैंड विनय, उनके लिए भेज रही हैं प्यार बिकॉज आज ऑन 23rd of August ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे और उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. साथ ही यहाँ पर आशना, हमारा साथ दे रही हैं आप और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना अपने सभी कलीग्स के लिए. ऑन संडे यू ऑल आर वर्किंग एट अ मॉल एंड पूजा है, अखिलेश है, वी ऑल्सो हैव स्मिता एंड अफसाना, हमारा साथ दे रहे हैं आप सभी. सो लोड्स ऑफ करेज टू यू ऑल वर्किंग एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, गाना होगा आपके लिए. कहते हैं थैंक यू सो मच रेडियो मस्ती फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. हेलो परी, हेलो जी, आपने इतना अच्छा मैसेज लिखा लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया. अब जो भी है, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुपर क्यूट मैसेज. इतना आपने पसंद किया है शो को, गानों को, और कहती हैं कि आपको मौका नहीं मिला लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया था इन द गेम. ओहो, आई डू अंडरस्टैंड. लेकिन कोई बात नहीं, वादा तो नहीं करते हैं लेकिन विश ज़रूर करते हैं कि अगली बार आपका नाम लकी ड्रॉ में ज़रूर निकले. बस पार्टिसिपेट करते रहिए, क्या पता जैसे हमने कहा कि किस्मत का साथ कब मिल जाए, यू नेवर नो. सो हम भी आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस भेजते रहेंगे. मिस्टर रोशन, हमारा साथ दे रहे हैं आप और विश करना चाहते हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ये है फॉर रोशन पूरन. ओके, आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बेस्ट विशेस आपके लिए कमिंग फ्रॉम मामा अमृता. आपके बेटे हैं रयांश, आपकी बेटी क्यारा और सभी आपके परिवार की ओर से स्पेशल विशेस एंड बहुत सारा प्यार.

कहते हैं हेलो स्वीट लवली परी, हेलो जी दारिन श्वेता रविश पीछा लवशा नपालू परिवार खुशनुमा से हमारे म्यूजिकल हमसफर बन गए हैं आप भी। तो जाते जाते एक खूबसूरत गाना होगा आपके नाम भी और बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए जो हमेशा साथ निभाते हैं। तो छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन एंड ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम। फिल्म है दिल पिक्चराइज्ड ऑन माधुरी दीक्षित एंड आमिर खान। 52 and with this track, परी साइनिंग ऑफ आ रही है नलमनी लेकर योर बॉली ब्रंच लेकर आएगी आपके लिए खूबसूरत गानों का प्लेटर। सो उनका साथ निभाइए और मुझे इजाजत दीजिए। मुलाकात कल 2 to 4 तक इन योर बॉम्बे टॉकीज। तब तक के लिए साथ दीजिए रेडियो मस्ती का। हैव अ वंडरफुल संडे, एंजॉय योर वीकेंड, लोड्स ऑफ लव, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: वेलकम टू RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: नॉर्थ, साउथ,
3: 103.5,
2: ईस्ट, वेस्ट,
3: 96.4,
2: सेंटर,
3: 99.4।
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: सुबह के 11 बजे है।

0: चलिए सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। श्रावण मास चरम पर है, एक हफ्ते बाद श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। इस पावन मास के अवसर पर कई भक्तगण गंगा तलाव तक की यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों में, बसों में या और कुछ अन्य लोग कांवड़ लिए पदयात्रा करके गंगा तलाव जा रहे हैं। कल वहां पर श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया और श्रावण मास के संदर्भ में ही मौसी सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की पहल पर गंगा तलाव में आज एक भूमि पूजा की गई। इसका उद्देश्य है गंगा तलाव में गणेश पंचमुखी मंदिर का निर्माण करना। और मौर्य सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन के प्रधान भोजराज गुजबिन के अनुसार ये मंदिर अगले साल के महाशिवरात्रि पर्व से पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज़्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में संभव हो पाया है जिन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। साथ ही इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर

0: अवसर भी मिला। इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत को कम करना और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को और मजबूत करना है। मंत्री पत्रिका सेवादन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई सहायक कंपनी की घोषणा की है। सीबी एनर्जी सोलर पैनल्स के आयात और उन्हें लगाने की जिम्मेदारी संभालेगी। इस कदम का उद्देश्य होम सोलर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाना है। पत्रिका सेवादन कल अंगेता में मौजूद रहे, जहां इस परियोजना के फेज टू बी से 400 परिवारों को लाभ होगा। इस योजना को यूएनडीपी सहित कई अन्य साझेदारों का सहयोग प्राप्त है। विदेश में यूक्रेन में बचाव कर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग मॉल के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं। क्रियेव री इलाके में दो ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हुई है जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Body Branch, RM2, Radio Must See.

0: ब्रांच
1: आर एम टू रेडियो मस्ती
2: इश्क शुबा मुश्क शुबा है या बस यही वाइब है बॉलीब्रंच में चिल द रिलैक्स और हैप्पी वाला मूड है इस नमनीय 2 बजे तक बॉलीवुड के कुछ खास गानों के साथ गॉसिप्स भी लेकर आएंगे तो इस संडे को सनये बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ही इट्स योर आरएमटू रेडियो मस्ती
0: बॉलीब्रंच
1: आरएमटू रेडियो मस्ती

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे मंजिल तो सबकी अलग होती है, किसी का सफर छोटा, किसी का लंबा, किसी की राह आसान और किसी की थोड़ी मुश्किल। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो इंसान मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम पर लगा रहता है और मुश्किलों के सामने हार नहीं मानता, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कमाल करके ही जाता है। तो अगर आज आपका सफर थोड़ा स्लो है, टेंशन मत लीजिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होता है, बस रुकना ही नहीं है, चलते रहना है। एंड याद रखिए, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है वो सफर जो हम एक बेहतर इंसान बना दे। मैं हूँ आपकी आरजी नीलमणि और आप सुन रहे हैं बॉली ब्रंच। तो चलिए म्यूजिक के साथ अपने इस खूबसूरत सफर को थोड़ा और यादगार बनाते हैं। नेक्स्ट गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, खास आपके नाम।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती
1: नेक्स्ट म्यूजिक का अलग किस्म सा वाइब्स ऑन गोइंग है अभी आपके ही बॉलीब्रंच में विद निर्मनी. कभी रुला देते हैं कुछ गाने तो कभी हंसा देते हैं. एंड वैसे डेडिकेशंस और मैसेजेस की लाइन ओपन है 5491294.

0: पर। तो अगर आपके पास किसी के लिए मैसेज है या बस एक गाना चलाना है उनके नाम, जल्दी से डू सेंड अस योर मैसेजेस 5499-1294 पर।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti।

0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: यस, बॉली ब्रंच में मैसेजेस एंट्री मार रहे हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन मोस्ट ऑफ यू कनेक्टेड हो चुके हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ है। बिग हेलो टू जना जी, एज यूजुअल लव, वो अपनी बेटियों के लिए स्पेशल गाना सुनना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं फॉर रीमा, जनिता, शेषता, अंशनी, यूवी, कृषि, सिल्विया, शिव सरन फैमिली के लिए। और माओवाकवा से वी हैव स्पेशल पीपल जो यात्रा पर जा रहे हैं टू गंगा तालाब, ट्रैफिक स्लो है और एक प्यारा सा गाना मांग रहे हैं ओ माई गॉड 2 मूवी से। तो हो जाए खूबसूरत गाना आपके इस जर्नी को और भी नई से बनाने के लिए। ऐसे ही कीप लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती 2 बजे तक। इट्स नाउ मनी फॉर यू
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. एक बार फिर आपसे याचना. नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. श्रावण मास अब चरम पर है. एक हफ्ते में यानी 28 अगस्त को श्रावण मास समाप्त होगा और इसी दिशा में इस पावन मास की शुरुआत से ही लोग गंगा तालाब की यात्रा कर रहे हैं. कुछ लोग गाड़ियों में, बसों में या कुछ कांवड़ लिए पदयात्रा करके जा रहे हैं. कल वहां पर श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया और साथ में गंगा आरती भी की गई. और आज मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की ओर से एक पांचमुखी गणेश मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजा की गई. ये मंदिर महाशिवरात्रि तक पूरी हो जाने की उम्मीद है. पोटली में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रोबविल कलेक्शन की अर्ध प्रतिमाएं रखी जाएंगी. ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाली एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है. अभी अंतर्राष्ट्रीय स्लेवरी म्यूजियम में मात्र 3 प्रतिमाएं रखी गई हैं जिन्हें प्लास्टर से बनाया गया है और जिनको मॉरिशस के गुलामों का आकार दिया गया है. जान ले कि बाकी के जो 50 बस्त हैं वो अभी भी फ्रांस में रखे गए हैं. उन्हें 2027 तक यहाँ लाने की योजना बनाई जा रही है. पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज़्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया. इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में ही संभव हो पाया है जिन्हें स्पेशलाइज्ड इलाज की ज़रूरत थी. साथ ही इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर भी मिला. इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों का इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत को कम करना है. विदेश की खबरों में यूक्रेन के बचावकर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग सेंटर के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं. वहां पर इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर पर 2 ड्रोन्स गिराए गए. 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 130 लोग लापता हुए हैं. घायल हुए हैं 4 लोग लापता हैं. बचाव अभियान अगले 2 दिनों तक चल सकता है. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया. ये थी अब तक की खबरें. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. हमें आज्ञा दीजिए.
0: Body Brunch, RM2, Radio Musti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: धीरे धीरे से हम पहुंच गए बॉली ब्रंच के सेकंड आवर में। हेलो, वेलकम बैक टू RM2 रेडियो, जहां पर अभी भी मस्ती जारी है लेकिन चिल वाइज भी ऑन गोइंग है। लंच टाइम हो गया है, कुछ खा लीजिए अगर अभी लंच बन रहा है दोपहर को आज। एंड बना फिर ची गानों के जरिए आपको एंटरटेन करती रहेगी नीलमणि, आप बस यहीं पर जुड़े रहना।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: And that was a Tera Mera Rishta ka gana. सुनते ही आवारापन नवाली नॉस्टैल्जिया हिट कर गया ना। वैसे बात हो रही है आवारापन की, तो एक इंटरेस्टिंग अपडेट तो आपको पता ही है, आवारापन 2 को लेकर पहले से ही काफ़ी बज बना हुआ है और न्यूली एडेड कास्ट में दिशा पतानी नजर आई। मतलब वो पुरानी कहानी का इमोशन, नई कास्ट का तड़का और साउंड ट्रैक का वही दर्द भरा मैजिक का आवारा 2 में हंगामा तो बनता है बॉस। तो गानों के साथ साथ इस आओ में रेसेस भी होने वाले हैं। 12:30 को पहली रेस शुरू हो रही है, तो आप बस यही पर आरम जो वीडियो मस्ती पर स्टे ट्यून्ड, एंड आपके लिए अमेजिंग गानों की बरसात लाती रहेगी नलमनी। सो स्टे ट्यून्ड यही आपके बॉली ब्रंच में।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: बॉली ब्रांच में है म्यूजिक और गॉसिप टाइम भी, और बॉलीवुड से आ रही है एक इंटरेस्टिंग अपडेट गोविंदा और सुनीता जी के बारे में। वो फिर से हेडलाइंस में है। कल की न्यूज में उनके रिलेशनशिप को लेकर काफी बज था। सुनीता जी ने डिवोर्स पेटिशन फाइल की थी, उन्होंने ऑफिशियली विदड्रॉ कर लिया है, और गोविंदा जी के मैनेजर ने भी कन्फर्म किया है कि देयर इज नो सेपरेशन। मतलब बॉलीवुड में कहानी में ट्विस्ट हो या इंटरवल के बाद कमबैक, गोविंदा स्टाइल में ड्रामा तो फुल ऑन होना ही है। तो गॉसिप का डोज मिल गया आपको, म्यूजिक को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं हीरो नंबर वन मूवी से सोना कितना सोना है का गाना।
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हीरो को हर सिचुएशन में एंट्री मिलती है, हीरोइन बारिश में परफेक्ट मेकअप के साथ होती है और विलेन को कभी भी फोन और नेटवर्क की दिक्कत नहीं होती है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? वैसे लॉजिक हो या ना हो, बॉलीवुड देखना लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जिंदगी के हर रंग को स्क्रीन पर दिखाता है। रोमांस हो, कॉमेडी हो, फैमिली ड्रामा, स्ट्रगल्स, इमोशंस, सपने और कभी कभी बिल्कुल हमारी रियल लाइफ वाली कहानी भी। इसलिए तो बॉलीवुड से हम सिर्फ मूवीज नहीं, मेमोरीज और इमोशंस भी कलेक्ट करते हैं। तो लॉजिक को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और एंजॉय करते हैं अनदर बॉलीवुड सॉन्ग। मैजिक को फील करो, इट्स योर बॉली ब्रंच।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार
4: नमस्कार एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का बच्चों और किशोरों की मानसिक स्थिति को समझने की जरूरत पर एक बार फिर जोर पुदोदो में 14 साल के किशोर से जुड़ा मामला और कुछ दिनों बाद जुल के निग गवर्नमेंट स्कूल में ग्रेड 6 की छात्रा के गिरने की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं दोनों मामलों की जांच जारी है शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद का कहना है कि स्कूलों में बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना जरूरी है उनके अनुसार बच्चों की बात सुनना उनकी परेशानियों को समय रहते पहचानना और स्कूलों में सुरक्षित माहौल देना अहम है जटिल बीमारियों के इलाज के लिए कुछ मरीजों को अब विदेश भेजने की जरूरत कम करने की कोशिश की जा रही है पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से अधिक जटिल मामलों का इलाज विदेशी डॉक्टरों के सहयोग से किया गया है इससे मरीजों को देश में ही विशेष इलाज मिल रहा है साथ ही स्थानीय मेडिकल टीमों को विदेशी विशेषज्ञों से नई टेक्निक और अनुभव सीखने का मौका मिल रहा है इसका उद्देश्य मॉरिशस में विशेष इलाज की क्षमता को और मजबूत करना है समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मॉरिशस के 2400 पंजीकृत मछुआरों को मुफ्त फर्स्ट एड किट्स दिए जा रहे हैं बजट 2025-2026 में घोषित इस योजना की शुरुआत बॉम्बू विरियो और मेबर्ग से हुई बॉम्बूवियो में 75 मछुआरों को किट्स और 25 कूलर दिए गए अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिका से एक राज्य जैसे फायदा उठाने का आरोप लगाया है व्यापार वार्ता टूटने के बाद अमेरिका ने कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर Amuse Lane, Nouvelle-France, 77 साल के 77 years old के श्री करमवीर पूरन की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें उदू के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे उन्हें के मकान Nouvelle-France से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की मिसिज डेजी रानी सिबन की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें आरती के नाम से ज्यादा जानती थी उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 उनकी मां चिंता सिबलक के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: On NBC Play, NBC Radio.TV.
5: Body Brunch, RM2, Radio Musti.

वैसे गानों के जरिए आपको वाइब कराते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए वक्त है थोड़ी रेसिंग एक्साइटमेंट का। सेकंड रेस शुरू हो रहा है, कौन निकलेगा सबसे आगे और कौन करेगा लास्ट मिनट सरप्राइज, चलिए थोड़ी देर में जानने वाले हैं।

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: सिकोप के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी एकोलोजी खा। इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क करा या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइया। इमें नियम आशर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: यस, वॉली ब्रांच का सफर ऑन गोइंग है। अभी बात करते हैं एक ऐसे सिंगर के बारे में जिन्होंने कई दिल जीते हैं और फिर से चुराने वाले हैं हमारे दिल को ऑन 5 September। यस, शान आ रहे हैं मॉरिशस में फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट एट SBICC पाई एज फ्रॉम 8 PM। तो अगर आप उनके सबसे बड़े फैन हो, डोंट मिस इट। एंड ऑल्सो आपके लिए गेम्स के जरिए टिकट्स है एज विनिंग प्राइस है, सो कनेक्टेड रहना, क्या पता आप बन जाओ टिकट्स के विनर। अभी के लिए शान की आवाज में एक गाना आपके नाम है, नॉट टू फॉरगेट कि 1:40 पर थर्ड रेस शुरू होगा।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

एंड इसी गाने के साथ टाइम हो चला है फॉर मी एंड मनीष से बाय, आपसे मिलने वाली है नेक्स्ट आपके शो में प्लग एंड प्ले, हंसनी आने वाली है आपका साथ निभाने के लिए, सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती पर ही एंड हैव अ ग्रेट सन्डे.

0: The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Wish you all a very good afternoon. I want to check your time. It's already 2 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ. आपको नमस्कार आस्था.
5: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. पिछले अफ्रीकी मो पास्काल में कल एक गैरेज में काम करने के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सोयफू की मौत हो गई. वो बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे. शुरुआती जाँच के मुताबिक वो एक बस के नीचे मरम्मत कर रहे थे, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे गिर गया. उसका सिर बस के एक हिस्से और पिछले पहिए के बीच फंस गया. मौके पर पहुंची सामूहिक की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जीतू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के मुताबिक गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई है. गैराज में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस हादसे के सही कारणों की जाँच कर रही है. मॉरिशस में विकसित समुद्री टेक्निक अब अफ्रीकी देशों तक पहुंच रही है. मैगूर की इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड समुद्र के भीतर जांच के लिए विशेष ड्रोन और जहाजों की सतह पर जमा गंदगी साफ करने वाली मशीन तैयार कर रही है. इन उपकरणों को पूरी तरह मॉरिशस में ही बनाया गया और जोड़ा जाता है. पिछले 6 महीनों में इन्हें अफ्रीका के कई बंदरगाहों में भी भेजा जा रहा है. समुद्री खीरे यानी सी क्यूकम्बर को लेकर मॉरिशस में एक नया प्रयास आगे बढ़ रहा है. मकसद है समुद्र में इनकी संख्या बढ़ाना और ये देखना कि क्या भविष्य में इसका पालन एक कारोबार के रूप में किया जा सकता है. इसी परियोजना पर एल्बियन फिशरीज रिसर्च सेंटर में चर्चा हुई. ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों के सहयोग से चल रहे इस काम का मंत्री अरविंद बुलेल ने जायजा लिया. विदेश स्तर पर अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिका से एक राज्य जैसे फायदे चाहने का आरोप लगाया है. व्यापार वार्ता टूटने के बाद अमेरिका ने कई कनाडा के सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है. जवाब में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे गलत फैसला बताते हुए 8 सितंबर से स्टील, डेयरी सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स पर बराबर टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की डेजी रानी सिबन की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह के 10:30 बजे उनकी माँ चिंता सिबलक के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM. लामूस लेन न्यूवेल फ्रांस में 77 साल की 77 years old की श्री करमवीर पूरन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें उदो के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उन्हीं के मकान न्यूवेल फ्रांस से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: RM2 रेडियो मस्ती. प्लग एंड प्ले.
3: RM2
1: प्लग एंड प्ले.

That's our plug and play. और यहाँ पर आ गई है हंसनी आप सभी लोगों का साथ निभाने के लिए. I wish you all a wonderful time, a great afternoon, happy weekend to everyone. हमारे फ्रेंड्स जो जुड़े हुए हैं इस समय, आप सब लोग कैसे हो जी? Really hope कि सब ठीक है, सुबह से सब कुछ अच्छा ही जा रहा है. Really having a nice good day. सेलिब्रेट करने के लिए वो स्पेशल डे ना जो आप लोगों के लिए आया है. So many happy returns of the day. जितने भी हमारे फ्रेंड्स

99.94 दिस इज अवे जहां पर आपके मैसेजेस बिल्कुल पहुंच जाएंगे सही सलामत और कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे शॉट मोर सपोर्ट रेस आज तो घुड़दौर है और विल बी हैविंग द रेस फोर यस थोड़ी देर के बाद हम आपको ले चलेंगे शॉट मोर सपोर्ट रेस जहां पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस और वैसे हमारे कई भक्तगण शिव भक्तगण बढ़ रही है गंगा तालाब की ओर कुछ तो कल गए थे और काफी ट्रैफिक तो थी कल लेकिन भक्ति भाव के साथ सारे जो भक्तगण हैं वो उपस्थान हो रहे थे कांवड़ों के साथ गंगा तालाब और कुछ तो आज जा रही हैं कई तो लौट रही हैं वापस आपका जो सफर है बस शुभ मंगलमय रहे यही हमारी शुभकामनाएं है हर हर महादेव आप सभी को भगवान भोलेनाथ की जो कृपा से आपके जीवन से सुख शांति समृद्धि और एकदम उत्तम स्वास्थ्य बना रहे और इस पावन श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ओम नमः शिवाय हर हर महादेव

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Yes, we are celebrating your weekend और वो भी रेडियो मस्ती के साथ doubling your dose of मस्ती यहाँ पर खुशियों के साथ ही हम मनाने वाले हैं आज का ये दिन. This is our plug and play जहाँ पर हम मिलते हैं, कुछ बातें शेयर कर लेते हैं और अपनों को हम याद कर लेते हैं. Enjoying our family time, let us make it a bit more special and interesting जहाँ पर भी साथ जारी है. Maybe you want to take a break, हफ्ते भर के लिए काफी काम हो गया है, कितने सारी जो जिम्मेदारियां थी और बढ़ रही थी. Maybe स्कूल रिज्यूम जो हुआ था काफी हेक्टिक रहा होगा. सो अभी टेक अ ब्रेक एंड जितने भी परेशानियां हैं उनको बस भूल जाइए. फॉरगेट योर वरीज एंड एंजॉय द लिटिल थिंग्स, जो छोटी बातें हैं जो आपको दे रही हैं ढेर सारी खुशियां. एंजॉय दिस म्यूजिकल सफर अप टिल 4 PM जहां पर हम सुनी देने वाली है बिल्कुल सभी लोगों का साथ. टू मेक इट फन, टू मेक इट अ वंडरफुल वन.

0: अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना।
1: Plug and play.
2: RM2.
3: That was indeed one of the romantic song. Picturized on Shraddha Kapoor aur saath mein thi Aditya aur Vishak. That was Aashiqui 2 ka kissa. एक बार फिर से हम आशिकी की इस दुनिया में कदम बढ़ा चुके हैं. इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन जो यहाँ पर साथ निभाते हुए बस कनेक्टेड है विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक हैपनिंग इन आज का प्लग एंड प्ले. कुछ ऐसे गाने जो बस किसी की याद दिलाएंगे डेफिनेटली. ये तो मैजिक है म्यूजिक का जो हर पल चल जाता है. एंड वी आर हियर लेकर कुछ आपकी खास बातें यहाँ पर, चाहो या ना. ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर चाहने पर भी कुछ चाहत है तो बस उसी चाहतों के नाम से हम सजाने वाले हैं. और चाहूँ मैं तुझे अपनी दुआओं में रखना, तेरी खुशियों को अपनी खुशियों में रखना, तो रहे हमेशा मुस्कुराता हुआ, बस यही ख्वाहिश है दिल में रखना. थैंक यू यश फॉर शेयरिंग योर मैसेज. And that was so lovely and really enjoying the song selections in a plug and play. I want to dedicate it for someone very special. कल उनसे मुलाकात हुई और ये जो कशिश है छा गई है. And really happy to have met her कल. तो उन्हीं के लिए था ये स्पेशल पेशकश और मैसेज भी था उनके लिए. ऑलराइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्पेशल फीलिंग्स. ये म्यूजिकल शो कुछ ऐसा ही है जहाँ पर दिल का कनेक्शन बस हम मोने के साथ जुड़ जाते हैं. हेलो हंसनी. हेलो जी, आरती जी का साथ है लिसनर ऑफ रेडियो मस्ती. ऑन योर वे टू गंगा तालाब, सो विश यू अ शुभ यात्रा एंड हर हर महादेव का जाप करते हैं हम. बस आगे बढ़ेंगे, यात्रा एकदम सफल सुरक्षित रहे यही हमारी कामना है. यहाँ पर गाना जाएगा सभी गनोरी बुद्धन और शिभु परिवार के लिए जो यहाँ पर साथ निभा रही है और यात्रा को एकदम सफल बना रही है. हर हर महादेव, आप तो जा रहे हो यस महादेव के दरबार में, बस खाली हाथ आप लौट कर तो नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो भोलेनाथ है और कृपा वो बस करे हमारे सभी शिव भक्तों पर, यही हमारी शुभकामनाएं हैं. तो यहाँ पर सफर जारी है इसी उम्मीद के साथ कि जितने भी गाने हम लेकर आएंगे बस आप पसंद करेंगे एंड तो शेयर में योर मैसेजेस करेंगे. आप लोगों का इंतजार. हंसनी विल बी विद यू अप टिल 4 पीएम.
1: प्लग एंड प्ले.
2: RM2.
1: प्लग एंड प्ले.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमनी के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमनी की वेबसाइट sikkim.mu पर जाई हा। इमे नियम आशर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।
0: प्लग एंड प्ले।
3: RM2
0: प्लग एंड प्ले।

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: And I'm sure इस गाने को सुनने के बाद definitely आप अपनी जाना को याद कर रही है ना. So this is a way जहाँ पर आप अपने दिल की बातों को बयां कर सकेंगे. This is Way to Misty. This is our plug and play. और ये थी the beautiful voice of Shan. Shan जो आने वाली है बहुत जल्द Mauritius. And उनका जो live concert है will take place on 5th of September. Don't miss. Organized by Gravity Zero. Shan जो आने वाली है in Mauritius बहुत ही जल्द लेकर spectacular evening of Bollywood.

म्यूजिक नॉस्टैल्जिया डोंट मिस द चांस टू बी पार्ट ऑफ हिज ग्रेट कंसर्ट जो होने वाला है एट SBICCPI और 5 सितंबर पर शुरू होगा वो इवेंट फ्रॉम 8 PM. अब तक अगर आपने अपना जो टिकट है बुक नहीं किया है सो डू इट इमीडिएटली. यहाँ पर डोंट मिस द चांस टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेट नाइट. यहाँ पर बिल्कुल उनके साथ रहेंगे लॉट्स ऑफ मेमोरीज, लॉट्स ऑफ ग्रेट सॉन्ग्स. तो यहाँ पर कलेक्शन जारी है. दिस इज द प्लग एंड प्ले. एंटरटेनमेंट का ये सफर अच्छा रहा है और यहाँ हाय हंसनी जो आप ही के साथ है. प्यार की बातें हो रही है तो हमने सोचा लेट अस ऐड दिस वन एंड अपने प्यार को याद करें.

हम तो कहेंगे फील द जोश, फील द एनर्जी जो हम लेकर आ रहे हैं इन आवर प्लग एंड प्ले का म्यूजिकल सफर. ये जारी है टिल 4 PM और ये जो ताल से ताल मिलाते हम रहेंगे, ये जो संगम है वो बस हम जारी रखेंगे. इसके लिए आप सुनते रहिए स्टे वेल कनेक्टेड. अभी इशारा है थोड़ी देर में, कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर जो होने वाला है ठीक 3 बजे. इसके बाद हंसनी से मुलाकात फिर से होने वाली है. राइट, विल बी मीटिंग अप. कुछ बातें और भी शेयर हम करने वाले हैं, कुछ गाने हम लेकर आएंगे. स्टे वेल ट्यून्ड.

0: Say, feel the musty.
1: Wish you all a very good afternoon. Check your time. It's already 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेरा के साथ. आपको नमस्कार और आदाब.
2: नमस्कार आदाब. पूर्वी अफ्रीकी मोमास्काल में कल एक गैरेज में काम के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सोइफू की मौत हो गई. वो बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे. शुरुआती तहकीकात के मुताबिक वो एक बस के नीचे मरम्मत कर रहे थे, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे आ गया. उनका सिर बस के एक हिस्से और पीछे पहिए के बीच फंस गया. स्थल पर पहुंची सैमी की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जितू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के मुताबिक गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई. गैरेज में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस हादसे की सही वजहों की जांच कर रही है. मॉरिशस में बनी समुद्री टेक्निक अब अफ्रीकन देशों तक पहुंच रही है. मॉरिशस की इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड समुद्र के भीतर जांच के लिए खास ड्रोन्स और जहाजों की सतह पर जमी गंदगी साफ करने वाली मशीन बना रही है. इन उपकरणों को पूरी तरह मॉरिशस में ही तैयार किया जाता है. पिछले 6 महीनों से इन्हें अफ्रीका के कई बंदरगाहों पर भी भेजा जा रहा है. समुद्री खीरे यानी सी क्यूकम्बर की संख्या बढ़ाने के लिए मॉरिशस में एक नई पहल चल रही है. साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि भविष्य में इसका पालन आमदनी का जरिया बन सकता है या नहीं. इस योजना पर एल्ब्यू फिशरीज रिसर्च सेंटर में चर्चा हुई. ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों की मदद से चल रहे इस काम का मंत्री अरविंद बोलेल ने भी जायजा लिया. बच्चों और किशोरों की मन की स्थिति को समझने की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया जा रहा है. पुतकोदो में 14 साल के एक किशोर से जुड़ा मामला और जिल किनिक गवर्नमेंट स्कूल में ग्रेड 6 की छात्रा के गिरने की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं. दोनों मामलों की जांच जारी है. शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है. विदेश में अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर तनाव और बढ़ गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा अमेरिका से एक राज्य जैसे फायदे चाहता है बिना उसका हिस्सा बने. दोनों देशों के बीच बातचीत टूटने के बाद अमेरिका ने कई कैनेडियन सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है. जवाब में प्रधानमंत्री मॉकोनी ने 8 सितंबर से कई अमेरिकन सामानों पर भी उतना ही टैरिफ लगाने का ऐलान किया. कोनी का कहना है कि दोनों मुल्क अब ट्रेड वॉर की स्थिति में है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए.
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: रीगा लेन लुउशे त्यागुज में 76 साल के 76 years old श्री गोबिन रीगा जो गाबी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे इनके घर रीगा लेन लुउशे त्यागुज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टमोरो एट हाफ पास्ट 10 AM. रॉयल रोड बुबासे में 69 साल के 69 years old श्री आनंदा नौसू की मृत्यु हो गई है. अर्थे कल 10 बजे एलियनसन बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 10 AM. शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है.
4: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Jag and play
1: RM2.
2: ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बड़ी संख्या में हमारे शिव भक्तगण प्रस्थान हो रही है गंगा तालाब की ओर। कल से शुक्रवार से कई दिनों से वो जा रही हैं मंगल महादेव के दरबार में और कुछ जो हमारे फ्रेंड्स सजरे हुए हैं और सफ़र को तय करते हुए बस सजरे हुए हैं बुध रेडियो मस्ती। तो जय जयकार हो हर हर महादेव आप सभी को। महादेव की भक्ति में जो सुकून है वो दुनिया की किसी भी दौलत में नहीं। जिसके सिर पर हाथ हो भोलेनाथ का

किसी बात का डर नहीं, हर हर महादेव जो बस हमारे कण कण में है और भोले की भक्ति में ही शक्ति है, भोले के चरणों में ही शांति है, जिसके दिल में बसे महादेव उसकी जिंदगी हमेशा खुशहाल है। हर हर महादेव आप सभी को। और यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं वो द रेडियो मस्ती, सभी लोगों का साथ निभाते हुए, और जहाँ पर ट्रैफिक कुछ स्लो जा रही है

0: till 4 p.m. Already we are in the second hour. यहाँ पे सबका स्वागत है. Enjoying your chai, enjoying your afternoon. तो यहाँ पर है आज हंसनी जो जुड़ी हुई है आप सभी लोगों के साथ. Drive करते समय please be cautious. कुछ जगहों पर तो it's like ongoing traffic. Traffic का जो flow है it's like very smooth. तो still you have to maintain your precautions. आराम से इत्मीनान से आप गाड़ी चलाएं and have a wonderful drive. और अभी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं. प्रणाम टू माँ सुशीला, प्रणाम टू भाई विषय और हर महादेव आप दोनों को. रेडी हो कि आज का जो यात्रा रहा एकदम सफल रहा और बस घर वापस अभी आप जा रही हो. सो विश यू अ सेफ ड्राइव बैक. और जो अगला गाना है वो बेशक आपके लिए एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ ए के जो यहाँ पर जुड़े हुई है. चलिए उनके नाम से हम डेडिकेट करना चाहेंगे एक वंडरफुल सॉन्ग.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: और ऐसे ही रंगीन हम बना रहे हैं आज का ये म्यूजिकल सफर को और तय करेंगे ये सफर आपके साथ अप टिल 4 PM एंड टू ऐड सम मोर कलर्स आपको तो पता है विल मेक इट मोर कलरफुल ताकि ये जो जिंदगी आपको मिली है वो कुछ और रंगीन हो जाए. अभी हेलो टू ऑल द फैमिलीज, हमारे सभी परिवारों का दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे. दिस इज रेडियो मस्ती जहाँ पर हम अपने फैमिली टाइम को इंक्लूड कर लेते हैं, फैमिली टाइम को और भी खास बना लेते हैं. सो जहाँ पर भी साथ जारी है, आप घर पर हो, कुछ आराम फरमाते हुए, having some rest, कुछ रिलैक्स करते हुए आज ये जो मौका हमको मिला है, it's a break actually, it's a weekend, तो make the most to have some rest. कल एक बार फिर से we'll be having the routine week जो शुरू होने वाला है, लेकिन अभी chill out, अभी it's time to have some rest, to have some fun. A big hello to Dindoyal families जो strongly connected है with Radio Masti. Ashwin जी का हम warm welcome करना चाहेंगे. Namaskar to you and wish you a wonderful weekend. और साथ में है आपके ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा, साथ में है लवली डॉटर्स और सभी लकी नारायण और दीनदयाल परिवार और सभी मनबोध परिवार के लिए भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे और स्पेशली आपके लिए मिस्टर अश्विन दीनदयाल जो यहाँ पर आए हैं टू शेयर योर गुड विशेस और कल के लिए बॉन कुराज एंड जो काम करने जाएंगे ऑफकोर्स हम सब के लिए हम लेकर आएंगे लॉट्स ऑफ गुड विशेस. लेकिन अभी इट्स टाइम टू रिलैक्स राइट, एंजॉय करें हमारे अगले गाने को. आई रियली होप यू विल एंजॉय इट एंड सी यू सून. यहाँ पर आज का दिन जो आपको मिला है मेक द मोस्ट, ये जो जिंदगी हमको मिली है हमारी है राइट, सो इससे खुलकर हमें जीना चाहिए. जिंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है, बस इसे महसूस करने की ज़रूरत है. दूसरों की उम्मीदों में नहीं बल्कि अपनी खुशियों में जिए. हर पल को दिल से अपना लीजिए और अपना दिन अपनी मुस्कान के नाम से सजा लीजिए. हर दिन एक नई शुरुआत है, इसके लिए कल की चिंता छोड़ो, आज को महसूस करो और अपने अंदाज में जियो.

वेलकम अगेन ऑन द रेडियो मस्ती. यस, आवर म्यूजिकल शो. और अभी टाइम हो चला है टू हैव सम डेडिकेशंस. तो यो ले चलेंगे जहां पर सूरज भाई का साथ है. जय हो हर हर महादेव आपको भी. एंड लिसनिंग टू प्लग एंड प्ले एंजॉयिंग द कलेक्शन. आपके लिए जरूर एक गाना तो बनता है ना आपके लिए. एंड फॉर एवरीवन जो वहां जुड़े हुए हैं एंजॉयिंग आज का म्यूजिकल शो. एंड ऑल्सो वी हैव रोहन जी. यहां पर तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो गेट वेल सून आपके लिए और सभी रामलोचन परिवार के लिए भी एक गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए. एंड फॉर एवरीवन जो आपको जानते हैं, हेलो टू रवीना, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर. इट्स अ गुड विशेस टू यू, हैव अ ब्लेस्ड जन्मदिन. और यहाँ पर गाना आपके लिए बिल्कुल चल जाएगा फॉर दीक्षिका के लिए जो आपकी प्यारी सी दोस्त है और वो भी मना रही है अपनी सालगिरह. आज धूमधाम से मनाएंगे एक साथ. हैप्पी बर्थडे आप दोनों को. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज. हाय हंसनी, हेलो जी, स्विनल का साथ है. हर हर महादेव टू यू एंड टू एवरीवन जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, स्पेशली टू द नव युवक संग बॉयज ऑफ ब्रह्मस्थान जो घर वापस बस जा रही हैं फ्रॉम गंगा तालाब. वो खुआज उन सभी को. और गाना चल जाएगा फॉर भाई श्रवण के लिए, फॉर भाभी कृति अभिनव की.

0: या नव्या और पूरे तिलक परिवार के लिए भी वी हैव गॉट अ स्पेशल गाना कमिंग अप. एंड हेलो टू यलेश शाम आज ऑलवेज एंजॉइंग रेडियो मस्ती फ्रॉम सुरीनाम. आपका दिल से वेलकम है जी गाना आपके लिए. नेक्स्ट वन फॉर अक्षत एंड दक्ष के लिए हु आर ऑन देयर वे टू गंगा तालाब फ्रॉम पापा जो यहाँ पर उनको दे रही हैं लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस. और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो बस जा रही हैं मंगलमय रहे यात्रा और भोले बाबा की कृपा से उनके सब जो मन की मुराद है पूरी हो जाए ये हमारे शुभकामनाएं हैं. चलिए यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं और आप जा रहे हो गंगा तालाब तो मिलकर इस यात्रा को और भी पावन बनाएंगे विद रेडियो मस्ती स्टे वेल कनेक्टेड. जहाँ पर भी आपका साथ जारी है हम बस चले आ रही हैं आप लोगों का हम सफर बनने के लिए.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Torpedo, that was What Happened To, जो क्रेज मचा रहा है और ऐसे में बहुत सारे चाहने वाले इस गाने के लिए जो इस समय जुड़े हुए हैं, स्पेशली फॉर आरएससी. थैंक यू फॉर लिसनिंग माय डियर, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग रेडियो मस्ती. और ये था स्पेशल गाना आपके लिए, वेली होप कि आपने बिल्कुल पसंद किया है. एंड ये था आपके छोटे से बेबी बॉय तनुष के लिए. एंड फॉर ऑल योर डियर वंस जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं विद रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज. और यहाँ पर चलते हैं बुरशाओ जहाँ पर मीला ने हमको याद किया है. बिग हेलो टू यू मीला देविदिन. और यहाँ पर गाना है इफ़ यू कैन प्ले जगन्नाथ महादेव सॉन्ग. ओके जी विल ट्राई इट. ये रहेगा सभी भक्त के लिए जो उमाकंत मंदिर से है, जो बुरशाओ से कनेक्टेड है टू रेडियो मस्ती. थैंक यू फॉर लिसनिंग. और हम लेकर आए हैं ओनली द गुड विशेस. हर हर महादेव आप सभी को. थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स. और यहाँ पर वी हैव कलवा जमुना एंड चिन्यापेन फैमिलीज जो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर द लवली कपल जो है आशीष एंड दिया. आज उनके यहाँ आए हैं एक क्यूट बेबी, बहुत ही क्यूट डॉटर आई है, बेटी आई है, लक्ष्मी आई है जी. बधाइयाँ हमारी पूरी टीम की तरफ से, फ्रॉम दादा संजीव, फ्रॉम दादी अंजनी, फ्रॉम गौदादी भगवंती और सभी परिवार यहाँ पर आए हैं टू कन्वे ऑल द लव एंड हैप्पीनेस. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर गुड विशेस. यहाँ पे आरती जी का साथ फ्रॉम पोर्टो पीमा. अ बिग हेलो टू यू एंड वेलकम. यहाँ पर गाना आपके लवली परिवार के लिए, फॉर डॉटर मिशिखा, फॉर मिशिखा किस्टो सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज. गुड विशेस टू यू मिशिखा, हैप्पी बर्थडे बेटी. एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस है फ्रॉम मामा आरती, फ्रॉम भाई गविष्ठ और सभी परिवार जो पोर्टो पीमा से है. सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू, गॉड ब्लेस. और बस हम लेकर आए हैं ओनली द गुड विशेस ताकि जो आपका बर्थडे है वो बने सबसे खास. तो इसके साथ जो

जाने का टाइम आ गया है. ओह माय गॉड, यहाँ पर कितना जल्दी वक्त निकल गया है पता ही नहीं चला. अभी 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद हम बढ़ेंगे शॉन्ड मॉस सपोर्ट रेस की ओर, जहाँ पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस एज वेल. मुलाकात हमारी जल्द होगी. फिलहाल आप मिलेंगे और जो संजय से जो लेकर आ रहे हैं आज का बॉलीवुड टक टक. स्टे वेल कनेक्टेड. आई विश यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड.

0: शाम के 4:02 हुए हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। पिछले काफ़ले के मोंट पास्कल में कल एक गैराज में काम के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सोइफू की मौत हो गई। वो बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे। शुरुआती जांच के अनुसार वह एक बस के नीचे मरम्मत कर रहा था, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे आ गया। उनका सर बस के एक हिस्से और पिछले पहिए के बीच फंस गया। मौके पर पहुंची सैम्यू की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जीतू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के अनुसार गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। मॉरिशस में विकसित समुद्री तकनीक अब अफ्रीकी देशों तक पहुंच रही है। मैगूज की इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड समुद्र के भीतर जांच के लिए विशेष ड्रोन और जहाजों की सतह पर जमा गंदगी साफ करने वाली मशीन तैयार कर रही है। इन उपकरणों को पूरी तरह मॉरिशस में ही बनाया और जोड़ा जाता है। पिछले 6 महीनों से इन्हें अफ्रीका के कई बंदरगाहों में भी भेजा जा रहा है। समुद्री खीरे यानी कि सी क्यूकम्बर को लेकर मॉरिशस में एक नया प्रयास आगे बढ़ रहा है। उद्देश्य है समुद्र में इनकी संख्या बढ़ाना और यह देखना कि भविष्य में इसका पालन एक कारोबार के रूप में किया जा सकता है। इसी परियोजना पर एल्बियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों के सहयोग से चल रहे इस काम का मंत्री अरविंद बुलेल ने भी जायजा लिया। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत टूटने के बाद अमेरिका ने कई कैनेडियन सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कनाडा अमेरिका से एक राज्य जैसे फायदे चाहता है लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है। जवाब में प्रधानमंत्री मैकॉने ने 8 सितंबर से कई अमेरिकन सामानों पर भी बरकरार टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अमेरिका और कनाडा अब ट्रेड वॉर की स्थिति में है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: कदमों में सवार होकर हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। प्रोग्राम म्यूजिक तक तक तक संजय के साथ अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक।
1: Music, music, tuk-tuk-tuk. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: A big thank to all those जो हर संडे की शाम को they don't forget to tune in to Radio Masti to have a sweet travel in the world of music. और आप सबों को हम बहुत ही प्यार से आप सबों को शुक्रिया अदा करते हैं आपके वफादारी के लिए and for being so faithful to Radio Masti to spend very nice moments together अपनी फैमिली के संग and for all those who will be working and enjoying 3 घंटों का mesmerizing musical सफ़र हमारे साथ आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया. सो आज इन 3 घंटों के दौरान विल बी गोइंग समय समय पर इंग्लिश प्रीमियर लीग, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले शुक्रवार से इस सीज़न 2026-2027 शुरू हो चुका है और कल तो आप जानते हैं नतीजा क्या हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड का. आज हमें देखना है कि न्यूकासल क्या करेगा, लिवरपूल का, सिटी भी क्या जलवा दिखाते हैं. So that would be this evening on Radio Masti. और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे अगर आज आपका जन्मदिन है on this 23rd of August, then whom are you sharing your birthday with? जहां तक बॉलीवुड का सवाल है. फिलहाल this one going for all those little boys जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Only to tell you that Papa and Mama love you so much.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: चार बजकर 26 मिनट म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ एंड टाइम टू विश कांग्रेचुलेशंस lots of love and blessings to lovely couple Ashish or Diya. Ashish or Diya for the newborn baby, very cute daughter, जो उनके यहाँ जन्म लिया है और शुभकामनाएं बहुत सारा प्यार बहुत सारा आशीर्वाद दादा संजीव की ओर से दादी अंजनी की ओर से गौ दादी भगवंती की ओर से एंड ओल्ड खलवा जमुना एंड चिनापियन फैमिलीज विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू आशीष और दिया को ऑन द न्यू बोर्न बेबी गर्ल इक्वली कमिंग फ्रॉम द होल रेडियो मस्ती टीम

सो एज प्रॉमिस्ड डियर लिसनर्स, समय समय पर हम आपको ले चलेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में, आपको लेटेस्ट खबरें देने के लिए कंसर्निंग फुटबॉल। और कुछ ही समय में हम आपको ले चलेंगे शॉन एमॉस फॉर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द फिफ्थ रेस। स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 4:52 यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ। आज की तारीख 23rd ऑफ अगस्त एंड टुडे इट इज अ बर्थडे

0: टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ। शिव शिव शंकर दैट वाज इन द ब्यूटीफुल वॉइसेस ऑफ जावेद अली एंड स्टेफन देबासी। यस, आपने सही सुना। In fact, I was a great fan of Javed Ali for his Sufi songs, लेकिन इस गाने को सुनकर I'm just नतमस्तक in front of him. In fact, एक बार जब भी मुशर्रफ भी आए थे for a beautiful concert, हम देखने गए थे and I fell in love with his Sufi songs, लेकिन अब की बार इस गाने के सामने I'm just spellbound. Thank you, Javed Ali ji, for this beautiful Shiva song. और लगे हाथ हम सलाम करना चाहेंगे उन तमाम यात्रियों को, because it is the last weekend of the month, the pavan month of Shravan is weekend. क्योंकि Shravan मास इस आगामी Thursday Friday को समाप्त हो रहा है. So all best wishes to the Yatrigan and the Kavartigan. कल रात इट वॉज mesmerizing at Ganga Talab. सुबह के 2-3-4 बजे तक भारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत से लोग सेवा में लगे हुए थे, एंड व्हाट एन एटमॉस्फेयर द

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: आपको ले चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। इंग्लिश प्रीमियर लीग आज जारी है, फर्स्ट डे ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग जो शुक्रवार को शुरू हुआ था, और आज 3 मैचेस निर्धारित हैं जिनमें से 2 शुरू हो चुके हैं। 24 मिनट्स प्लेड इन द मैच बिटवीन ब्राइटन एंड एस्टन विला, एंड ब्राइटन ऑलरेडी लीडिंग बाय 2-0। फर्स्ट गोल, इट वाज एन ओन गोल बाय विक्टर लिंडेलडॉफ ऑन द 8th मिनट, और उसके बाद मैक्सिम डिक्यूयर ने दूसरा गोल बनाया फॉर ब्राइटन। सो 24 मिनट्स प्लेड, ब्राइटन 2 एस्टन विला 0, और दूसरे मैच में इट स्टिल 0-0 बिटवीन मैन सिटी एंड बोर्नमुथ। याद रहे आज का लेट मैच होगा बिटवीन न्यूकासल एंड

0: आवे तेनो संग रखना।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। म्यूजिक टकटकाता
2: ऑन रेडियो 2 रेडियो मस्ती।
3: आज के हमारे फैशन टिप्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू एसेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर वेयरिंग इंडियन एथनिक वेयर विद ग्रेस। सो इंडियन एथनिक वेयर इज रेनाउंड फॉर इट्स रिच कलर्स, इंट्रिकेट डिजाइंस एंड टाइमलेस एलिगेंस। फर्स्ट टिप, ऑप्ट फॉर फैब्रिक्स लाइक सिल्क, शिफॉन, कॉटन और जॉर्जेट एज दे ड्रेप वेल एंड प्रोवाइड कम्फर्ट। The fabric should suit the occasion and weather conditions to ensure you feel at ease throughout the event. Dusra tip, proper fitting is crucial when it comes to Indian ethnic wear. Whether it's a sari, lehenga or salwar suit, make sure the outfit is tailored to your measurements. Ill-fitting, yaad rahe ki ill-fitting clothes can undermine the overall appearance. So ensure you have it altered by a skilled tailor if necessary. तीसरा जो टिप हम आपको देने चाहते हैं वो है एक्सेसरीज के बारे में। Accessorizing is key to completing an ethnic ensemble. Experiment with statement jewelry such as necklaces, earrings, bangles or mangtikas that match the colors and style of your outfit. A well-chosen clutch or potty bag can also enhance the overall look. So dress well and enjoy your event.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
0: Music, Tak Tak Tak.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक चकचकाता
1: ओएमजी रेडियो मस्ती।
2: हम तो बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हर प्यार गहरा होता जाए, हर दोस्ती और भी गहरी होती जाए, संबंधें और भी मजबूत होते जाए, बस यही मांग करते हैं। चलिए आपके मैसेजेस की ओर। राधा जी ने हमें याद किया है फ्रॉम कनाडा, विशिंग अ पायस श्रावण मास टू ऑल लिसनर्स, हर हर महादेव। वो लिखती हैं हर हर महादेव आपको भी राधा जी, और हर हर महादेव माला जी को भी। उन्हें गाना बहुत ही अच्छा लगा इस सेकंड आवर की शुरुआत में जो हमने चलाया जावेद अली की आवाज़ में। थैंक यू एवरीवन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो गोइंग टू अनिता जी जो फिका फ्लक से रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी हुई हैं। ललिता जीतन जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए एंड फॉर योर मैसेजेस। आरती जी हमारा साथ निभा रहे फ्रॉम पोतोपीमो, विशिंग लवली डॉटी मिशिका, मिशिका किस टू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। शुभकामनाएं मामा आरती और भाइयों की ओर से और आपकी पूरी फैमिली की ओर से। नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो गोइंग टू हादिका, नरमीन, नायरा, मसेरा, माइशा और नूस, ये हैं साबा की ओर से फ्रॉम थ्रियोली। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू ओवर देयर। साथ ही साथ नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर डॉटर, लेकिन अफसोस इसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया। ज्योति जी फ्रॉम शतुबेगानिस बिनागस, आपको भी हमारा सलाम। आपका टे वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग जो हमें यकीन है जितने भी लोग इस समय हमारा साथ निभा रहे हैं, इन द किचन, एट वर्क, और जस्ट विद द फैमिली, यू गोइंग टू अडोर दिस वन।

क्योंकि समय बहुत ही कम है, वेरी क्विकली वी मूव ऑन विद योर मैसेजेस। वीरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें रिवेज पर से एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा, धन्यवाद आपको। एंड वेरी हैप्पी 8th बर्थडे टू प्रिंस अहम एलोपा फ्रॉम रेन्यू आइलैंड फ्रॉम दागन चित्र रवि प्रशांत नवेश घोषणुआ। साथ ही साथ श्रेष्ठ डानी की ओर से फ्रॉम फोन जिसक नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर ऑल हर फैमिली मेम्बर्स। थोड़ी देर में हम सुनेंगे समाचार और समाचार के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो मस्ती।

रविवार 23 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 100% मॉरिशस में बनी उन तकनीकों और खोजों की जो आज मॉरिशस को उच्च तकनीक यानी कि हाईटेक समुद्री उपकरणों के क्षेत्र में एक प्रमुख पहचान दिला रही है। मैरूज स्थित इमर्जेंट मैरिटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऐसे अंडरवाटर ड्रोन्स तैयार कर रही है जिनका उपयोग समुद्र के भीतर जांच के लिए किया जाता है। श्रावण मास के संदर्भ में देश के कई जगहों पर शिव जी का विशेष पूजन किया जा रहा है। इसी दौरान आज आवनी मूलम कावड़ी का त्योहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया गया। श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर गंगा तालाब में आज एक भूमि पूजा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण करना। विदेशी स्तर पर कनाडियन प्रधानमंत्री ने कल नए अतिरिक्त टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका द्वारा उनके देश के खिलाफ शुरू किए गए व्यापार युद्ध के कड़े शब्दों में निंदा की। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जी हाँ बिल्कुल, आज हम शाम को ये बात करने जा रहे हैं कि 100% मॉरिशस में बनी उन तकनीकों और खोजों की, जी हाँ, जो आज मॉरिशस को उच्च तकनीक यानी कि हाईटेक समुद्री उपकरणों के क्षेत्र में एक प्रमुख पहचान दिला रही है। मैरूज स्थित इमर्जेंट मैरिटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऐसे अंडरवाटर ड्रोन से तैयार कर रही है जिनका उपयोग समुद्र के भीतर जांच के लिए किया जाता है। इन ड्रोन्स का डिजाइन, निर्माण और असेंबलिंग पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर ही की गई है। इसके साथ ही कंपनी ने जहाजों की सतह की सफाई के लिए भी एक विशेष मशीन बनाई है। पिछले 6 महीनों से इन तकनीकों का निर्यात कई अफ्रीकी बंदरगाहों पर किया जा रहा है। शहजाद अली जुमन की रिपोर्ट पर

0: आस्था गोबिंद का विवरण।
1: मॉरिशस में बनी समुद्री तकनीक अब एक नई पहचान बना रही है। मेहूश की इस कार्यशाला में समुद्र के भीतर जांच करने वाले खास ड्रोन बनाए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल बंदरगाहों के ढांचे की जांच के लिए होता है। ये करीब 80 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। समुद्री तट के भीतर नेशनल कोस्ट गार्ड की मदद के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ड्रोन की बनावट से लेकर बिजली और मशीन से जुड़े काम तक सब कुछ यही मॉरिशस में किया जाता है। इन्हें बनाने वाले शानी गरबरन के मुताबिक इग्लून नाम का ये ड्रोन विदेश से आने वाले ऐसे ही ड्रोन जैसा काम करता है, लेकिन इसे बनाने की लागत करीब 10 गुना कम है। इस ड्रोन को खासतौर पर जहाजों की जांच के लिए बनाया गया है। इसकी बनावट इसे ज्यादा कारगर बनाती है। इसे परखने के बाद अब पोर्ट लुई और दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर ऐसी जांच के लिए गोताखोरों को समुद्र में उतरना पड़ता है, जो काफी खतरनाक हो सकता है। इस टेक्निक से ये खतरा कम होता है और गोताखोरों की सुरक्षा बढ़ती है। इस ड्रोन को शुरू में जहाजों के निचले हिस्से की जांच के लिए बनाया गया था। समय के साथ जहाज के नीचे कोई और छोटे समुद्री जीव जमा हो जाती है। इससे जहाज की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज की टीम ने केवल जांच तक खुद को सीमित नहीं किया है। अगला कदम था इसकी सफाई। इसके लिए 2 मशीनें तैयार की गई हैं। इससे कचरा वापस समुद्र में नहीं जाता और प्रदूषण का खतरा भी कम होता है। जहाज पर जमा समुद्री जीव दुनिया के किसी भी हिस्से से आए हो सकते हैं, इसलिए सफाई के दौरान उन्हें मॉरिशस के समुद्र में छोड़ना ठीक नहीं है। हमारी मशीन गंदगी को खींचकर अपने अंदर जमा करती है। इसे मॉरिशस में ही बनाया गया है और परखा गया है, और अब इसका इस्तेमाल दूसरे देशों में भी हो रहा है। पिछले 6 महीनों से मॉरिशस में विकसित इन उपकरणों का इस्तेमाल अफ्रीका के कुछ बंदरगाहों में भी किया जा रहा है। यानी समुद्री टेक्निक के क्षेत्र में मॉरिशस का हुनर अब दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। मॉरिशस के पास इस सेक्टर में ज्ञान और हुनर है। हमने इसी हुनर को टेक्निक और कारोबार से जोड़ा है। हम अपने ड्रोन या मशीनें बेचते नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों में जाकर खुद अपनी सेवाएं देते हैं। इस तरह टेक्निक और उसे चलाने की जानकारी दोनों हमारे पास रहती है।
2: Nous pas vendre nous bande machine, nous pas vendre nous drone, nous pas les personnes, tous drone là, mais nous implantons dans les pays que nous offrons le service.
1: ये बाजार भले ही सीमित हो, लेकिन संभावनाएं बड़ी हैं। ये दिखाता है कि समुद्री अर्थव्यवस्था के सेक्टर में मॉरिशस के पास अपनी टेक्निक विकसित करने और एक प्रमुख तकनीकी केंद्र के रूप में आगे बढ़ने की क्षमता है।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि श्रावण मास भगवान शिव की उपासना का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है, इस दौरान गंगा आरती और भगवान शिव का के जलाभिषेक का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। श्रावण मास में गंगा आरती केवल नदियों की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में रंग जाती है। आरती के समय डमरू, शंख और घंटों की ध्वनि के साथ वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस तेलुगु महासभा और मॉरिशस तमिल कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के मिले जुले सहयोग से पहली बार के लिए भव्य रूप से श्रावण उत्सव मनाया गया। ज्यादा विस्तार सुमेहरा अकबर अली के साथ।
3: सदा वसंतम हृदय रविंदे, अर्थात शिव सदा हमारे हृदय में निवास करें। ये पंक्ति शिव भक्ति का एक गहरा भाव सामने रखती है। शिव जी की उपासना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें अपने भीतर अनुभव करने की भी बात करती है। मन में शांति, व्यवहार में संयम और जीवन में करुणा, ये वे भाव हैं जिनसे शिव जी को अपने हृदय में स्थान देने का संदेश मिलता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने तथा उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उनके भक्तों ने आध्यात्मिक वातावरण में कल गंगा

0: में उनकी पूजा की। कुछ भक्तों ने कावर यात्रा भी की। भोलेनाथ जी का पावन महीना श्रावण मास के अवसर पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए देश के चार कोनों से आए श्रद्धालुओं ने उनसे सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।
1: यहाँ पर बहुत ही शिवमय वातावरण छाई हुई है। शिव जी हमेशा सभी को अपने आंचल में बसाए, सभी को कृपा करके सभी का भला करे।
2: Profiter pour Jajut, viens faire puja ici, viens vivre sa positiveness ici-là, sa chivne et vatavaran-là, et l'autre même ça.
0: श्रावण मास केवल पूजा पाठ का महीना ही नहीं बल्कि आत्मसंयम, सेवा और सद्भावना का संदेश भी देता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस तेलुगु महासभा और मॉरिशस तमिल कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के सहयोग से एक भव्य श्रावण मास उत्सव का आयोजन किया।
3: हम सभी लोग साथ में मिलकर पहली बार के लिए ये मना रहे हैं और हम दिखा रहे हैं हमारे नौजवानों को कि हो सकता है कि हमारा जो बोलने का हमारा भाषा अलग है, हमारा जड़ अलग है, लेकिन हम सभी लोग सनातनी हैं। तो हमारे नौजवानों को हम ये सिखा रहे हैं कि हमारा कल्चर जो है, हमारा संस्कृति जो है, हमारा संस्कार जो है, ये लेकर आगे बढ़े, क्योंकि यही नौजवान हमारे कल का नया पीढ़ी है।
0: शिवमय वातावरण में विभिन्न संस्कृतियां दर्शाते हुए युवकों ने विशेष नृत्य एवं भजन कीर्तन किए।

0: कल इस कार्यक्रम का समापन गंगा महाआरती से हुआ।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर गंगा तालाब में आज एक भूमि पूजा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण करना। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रधान श्री भोजराज गुरबिन के अनुसार ये मंदिर अगले साल के महाशिवरात्रि पर्व से पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में। गंगा तालाब के किनारे पर 1100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर ये मंदिर बनाया जाएगा। इसी कारण श्रावण मास के संदर्भ में गंगा तालाब में एक भूमि पूजन किया गया।
2: हम लोग एक भूमि पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पर डिवाइन म्यूजियम में हम लोग एक मंदिर पंचमुख गणेश का मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदू परिवार है, पूजा शुरू करने से पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने एक गणेश मंदिर बनाने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है कि ये शिवरात्रि 2027 से पहले ये जो मंदिर है ये बन जाना चाहिए।
3: पृथ्वी की पूजा, क्योंकि पृथ्वी पर ही हम स्थापित हैं, पृथ्वी पर ही हम रहते हैं। और जब कोई नया निर्माण होता है, चाहे आप घर का निर्माण करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, कुछ भी है, तो क्योंकि भूमि में कई प्रकार के दोष होते हैं, उस दोष को समन करने के लिए भूमि में और भी कुछ कई चीज़ें होती हैं, वो सब को दूर करने के लिए पहले भूमि का पूजन किया जाता है और तब उसके बाद निर्माण होता है, चाहे आप अपने घर का कर रहे हो, मंदिर का कर रहे हो।
1: मैक्राना मोबिल से निर्मित गणेश पंचमुख मूर्ति भारत से लाई जा रही है, जिसकी लंबाई 8 फुट की होगी। श्रावण मास के उपलक्ष्य पर गंगा तालाब में भक्तों की भीड़ है और शिवमय वातावरण छाया हुआ है। इस मंदिर को लेकर भक्तों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
4: मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी शिव परिवार के सभी सदस्यों की मूर्ति है, तो

0: गणेश जी तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि वे तो हमारे प्रथम देव हैं। और जब शिव जी है, पार्वती जी है, अभी तो शायद कार्तिकेय की भी मूर्ति डाला गया है, तो पंचमुखी है, तो ये सब हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है।
1: जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम गणेश का पूजा करते हैं तो हमको नोस में जाना पड़ता है। अभी गंगा तालाब में एक पंचमुख गणेश हो रहा है, तो जितने भी हमारे डिवोटीज, जितने भी हमारे

0: पर विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया, जहां पर साल 2027 में गंगा तालाब की भूमि पर यहां पर एक गणेश पंचमुख मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। कैमरामैन ऋषि सिरतन के साथ मैं हूं अभी उदय, समाचार विभाग की ओर से।
1: तमिल महीने आवनी में जब मूलम नक्षत्र दिखाई देता है तब आवनी मूलम कावड़ी का त्यौहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। श्रावण मास के दौरान इस रविवार को गंगा तालाब के सोमनाथ आध्यात्मिक मंदिर में यह पर्व श्रद्धा से मनाया गया। भक्तों ने अपनी कावड़ी लेकर एक जुलूस निकाला। हिंदू हाउस की ओर से इस जगह पर पहली बार ऐसा आयोजन किया गया था। स्निट बिजनेस मॉरिशस ने इस रविवार को अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर को खास बनाने के उद्देश्य से वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के तहत काम करने वाले इस निजी संस्थान ने शिक्षा के प्रति इस्लाम के दृष्टिकोण और उसके महत्व पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस स्मारक समारोह की शोभा वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के मुख्य संरक्षक मौलाना शाह मोहम्मद अनस नूरानी सिद्दीकी की विशेष उपस्थिति ने बढ़ाई। फाहाको नाई की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
2: इस साल SNIT बिजनेस स्कूल के कयाम के 25 साल पूरे हुए हैं। बेल विलेज में ये निजी इदारा नई नस्लों में तालीम तदरीस और अच्छी तरबियत के लिए मशहूर है। हम्माद अब्दुल्ला बताते हैं,
3: en IT et ensuite nous finissons avec aussi en business management avec une qualification britannique. Ça nous donne l'occasion à beaucoup de jeunes et de professionnels qui vont gagner l'occasion à l'université pour gagner un degré, même qu'ils sont dans une forme 5.
2: इस सालगिरह को मनाने के लिए SNIT बिजनेस स्कूल ने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के सरपरस्त मौलाना शाह मोहम्मद अनस सिद्दीकी की हाजिरी में एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया।
4: The main concept of the foundation of forming the SNIT was to educate the new generation with the new educations of technologies of most advancements which can be very much
2: Educating humanity, the core affair of Islamic spaces and Alimi Nurani philosophy is conference ka unwan raha. Jamiatul Ulama Mauritius ke sadr Maulana Harun Asen, Professor Abdul Khaliq aur Maulana Nurani Gulfi ne Hazrat Muhammad ke hawale se Islam mein ilm ki ahmiyat ko ujagar kiya. Is salgirah ke mauke par SNIT बिजनेस स्कूल ने पोर्टलवी के तलबा को समाजी मेयार के मद्देनजर वजीफे यानी स्कॉलरशिप दिए। इसके अलावा कुरान की तिलावत, नात खानी और दीगर प्रोग्राम किए गए।
1: और जैसा कि हम बता रहे थे कि तमिल महीने आवनी में जब मूलम नक्षत्र दिखाई देता है तब आवनी मूलम कावड़ी का त्यौहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर विवरण आस्था गुबिन के साथ।
5: इस रविवार गंगा तालाब में आवनी मूलम कावड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई। तमिल महीने आवनी में मूलम नक्षत्र के आने पर ये पर्व मनाया जाता है। इस बार इसका आयोजन श्रावण मास के दौरान हुआ। 10 दिनों के उपवास के बाद श्रद्धालु अपनी कावड़ी के साथ पितरे से शोभा यात्रा में शामिल हुए। भगवान मुरुगन के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद पाना इस धार्मिक यात्रा का मुख्य भाव रहा।
6: Nous étudions dans ce mois-là, nous guettons qui bonne qualité nous est et qui mauvaise qualité nous est et comment nous capables corrige nous pour amener nous vers plus bien dans la vie plus devant.
7: श्रावण मास के पावन अवसर पर आज गंगा तालाब में न सिर्फ शिवमय वातावरण है, कहा जाता है कि आवानी मूलम जो है मूल नक्षत्र होता है यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार। और तो

0: आवानी जो है दक्षिण भारत में भी वहाँ पर ये कावेरी मने सभी में जो शत्रुता है उसको नाश करने के लिए, हमारे अंदर में जो द्वेष क्लेश है उसको नष्ट करने के लिए हेतु स्कंद महाराज कार्तिकेय स्वामी का पूजा की पूजा किया जाता है।
1: इस वर्ष पहली बार हिंदू हाउस की ओर से सोमनाथ स्पिरिचुअल मंदिर में इस पर्व का आयोजन किया गया।
2: C'est vraiment la richesse de nos cultures que nous pouvons trouver à Gangatala. C'est ça qui nous beauté et nous tous nous prier pour l'unité de nos pays, prospérité, la santé de nos pays. C'est ça nous motive pour que nos traditions vivantes nous célébrer tout bien la prière.
1: पूजा अर्पण और भक्ति के साथ ये दिन आस्था और परंपरा को समर्पित रहा।
3: पिछले हफ्ते के मोंपास्काल में कल एक गैराज में काम के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सुईफू की मौत हो गई। वह बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे। शुरुआती जांच के अनुसार वह एक बस के नीचे मरम्मत कर रहे थे, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे आ गया। उनका सिर बस के एक हिस्से और पिछले पहिए के बीच फंस गया। मौके पर पहुंची सैम्यू की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जीटू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के अनुसार गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। गैराज में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और पुलिस हादसे के सही कारणों की जाँच कर रही है। एल्बियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में गत शुक्रवार को समुद्री खीरा यानी कि सी क्यूकम्बर पालन परियोजना की प्रगति पर एक टेबल राउंड आयोजित की गई। इसके बाद मंत्री अरविंद बुल्लेल ने वहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की मदद से चलाया जा रहा ये कार्यक्रम समुद्री खीरे के स्टॉक को फिर से बढ़ाने और मॉरिशस में इसके एक व्यापारिक उद्योग के रूप में उभारने की संभावनाओं का आकलन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। सागा ओनो की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
4: ये आवाज उस चीज से निकली है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाईवे के किनारे से इकट्ठा किए गए पुराने विज्ञापन वाले फ्लेक्स बैनर ये गावान के एक हिस्से का काम करता है। इकट्ठा करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद सबसे मुश्किल काम आता है, इस सामग्री को सही तरीके से खींचकर लगाना ताकि मनचाही आवाज पैदा हो सके। इस पर्यावरण के अनुकूल तरीके में बकरी की उस पारंपरिक खाल की जगह फ्लेक्स बैनर का इस्तेमाल किया गया है जिसे आमतौर पर लकड़ी के घेरे पर खींच कर लगाया जाता है। हयान चमन कहते हैं, हमने देखा कि सड़क पर ये प्रदूषण फैलाता है, गतिविधि के बाद भी ये सड़क पर ही परा रहता है। हम इसे उठाकर लाते हैं, साफ करते हैं और गावान बनाते हैं। रेहान बीबी जोन कहते हैं, इसे एक बिजनेस भी बना सकते हैं क्योंकि ये सामग्री हर जगह मिल जाती है। बकरी की खाल में बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इससे अगर आज ऑर्डर करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर ये मिल जाता है।
3: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि कैनेडियन के प्रधानमंत्री ने कल नए अतिरिक्त टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका द्वारा उनके देश के खिलाफ शुरू किए गए व्यापार युद्ध के कड़ी शब्दों में निंदा की। ये बयान दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार वार्ता टूटने के बाद आया और जवाबी कार्रवाई के रूप में कनाडा भी 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील और डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहा है। बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 16 देशों से आए रोबोट्स को शामिल करने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ तकनीक की दुनिया की नवीनतम उपलब्धियों पर आधारित एक शानदार शो के साथ हुआ। और अंत में मौसम का हाल।
1: हमारे इलाके पर ऊंचे दबाव वाली हवाओं का असर है। आज रात को देश भर में आसमान साफ रहेगा। कल सुबह के दौरान केवल देश के पश्चिम

पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर कुछ बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगी। रात को हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:59 पर, सूर्योदय 6:25 पर।

तो देश विदेश की नई खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

अशोक समाचार सुनती हैं रॉयल रुद्रबासे में। रॉयल रुद्रबासे में 69 साल की 69 years old की श्री अनंदा नरसु, श्री अनंदा नरसु जिन्हें सब लोग अनंदा के नाम से भी जानते थे, और जो नंबर 33 सीएच अल्फ्रेड गली बुबासे के पूर्व निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी ताबूत कल दिन के 10 बजे लाशापेल ऑन्डांट एलियनसंस रॉयल रोड बुबासे से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए बुबासे स्थित एडवेंटिस जी सेम जो का गिरजाघर ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए बिगारा का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुमरो एट 10 AM केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की श्रीमती देसी रानी सिबन जिन्हें सब लोग आरती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती चिंता सिबालक के घर केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 10:30 AM रिया लेन फाउंटेन नंबर 23 लियोशे तेरूश में रिगा लेन फाउंटेन नंबर 23 लियोशे तेरूश में 74 साल के 76 years old के श्री गोबिन रिगा जिन्हें सब लोग गाबी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर रिगा लेन फाउंटेन नंबर 23 लोशे तेरूश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM एवेन्यू पेड्रिक्स मोसेलमेंट सान सूसी मोंटाय ब्लांश में Avenue Pédrix, mot seulement sans souci, Montagne Blanche, mais 74 sal qui, 76 years old qui, Shrimati Mirabai Dundi, Pédachinam Urpa, Ordine Sablouk Sewan qui nam si bijonte te, Unki mrityu ho gayi hai, Unki arthi kal din ke sarhe 12 baje, Unki bete, Shri Sivaram Dundi ki ghar, Avenue Pédrix, mot seulement sans souci, Montagne Blanche se uthakar, antim sanskar ke liye, Montagne Blanche ki shmshan bhumi le jaye jayegi, cremation tomorrow at 12:30 PM. रॉयल रुद कौची मिलिटिया में जो कौची मिलिटिया के टैक्सी स्टैंड के पास है, 93 years old के श्री रोहित पांचू जो मोका फ्लक जिला परिषद के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री सुगा पांचू के घर रॉयरुद कौची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विलमे कौची मिलिटिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM

0: इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Music,
3: Tak Tak Tak.
4: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 6:34 यू लिसनिंग टू रेडियो मस्ती म्यूजिक टकटक संजय के साथ वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ द प्रोग्राम और आपको ले चल आपको तुरंत ले चलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में जहां पर वी आर प्लेइंग द 74th मिनट ऑफ अबव मैचेस जो शाम के 5 बजे शुरू हुए एंड ब्राइटन लीडिंग बाय 4 गोल्स टू नील अगेंस्ट एस्टन विला यस 4 गोल्स टू नील एस्टन विला के जाओ गोमेज को एक रेड कार्ड भी मिला है ऑन द 40th मिनट सो एस्टन विला प्लेइंग विद ओनली 10 मैन एंड ब्राइटन एंड लीडिंग बाय 4 गोल्स टू नील यानी कि इस सप्ताहांत में मोस्ट प्रोबेबली ब्राइटन वुड बी ऑन टॉप ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल क्योंकि फ्राइडे को आर्सेनल ने 3-0 से अपने अपना मैच जीता था अगेंस्ट कोवेंट्री सो ब्राइटन इज वन मोर देन एस्टन विला सो 4-0 ब्राइटन ऑन टॉप ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग जबकि दूसरे मैच में सिटी की हार हो रही है मैनचेस्टर सिटी 0 बोर्नमुथ 1 गोल स्कोर्ड बाय मार्कुस टावेनिये ऑन द 26th मिनट याद रहे कि आज का लेट मैच होगा आखिरी मैच फॉर दिस फर्स्ट डे दैट विल बी बिटवीन न्यूकासल एंड लिवरपूल

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यूनुसो रात के 7 बजने में थोड़े ही समय बाकी हैं और हमारा आपका समय भी हमारी आपकी बहन भी समाप्त होने को चली। हमारे बाद हमारे दोस्त निखिल आपका साथ अवश्य निभाने आ रहे हैं, जबकि आई विल बी योर्स वंस अगेन ट्यूसडे नाइट। यस ट्यूसडे नाइट स्पेशल डे टू सेलिब्रेट द फर्स्ट ईयर ऑफ रेडियो मस्ती। सो आई विल बी हियर आपकी सेवा में, दैट विल बी एट नाइट। Let me give you 90 minutes played in the match between Brighton and Aston Villa. The score is still 4-0 for Brighton, 0 for Aston Villa. Jabki City ne equalize kiya hai 1-1 against Bournemouth. So both matches in additional time. In the matches ke final result aap kal subah awashya sune in Radio Masti Sports Update. Time for me to leave you with a very beautiful song. Take care, namaskar, dhanyavad, and have a great week ahead.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार मॉरिशस, संडे की शाम है, मौसम में एक अलग सी मिठास है और आप सुन रहे हैं आपका अपना बॉलीवुड सिज़ला। मैं हूं निखिल और अगले दो घंटे हम बात करेंगे उन गानों की जो कभी हमें हंसाते हैं, कभी पुरानी याद दिलाते हैं, कभी दिल को छू जाते हैं और कभी बस मन करता है कि आवाज़ वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ी और तेज़ कर दें। यहाँ साथ ही साथ मॉरिशस में श्रावण मास की यात्रा भी पूरे जोश में चल रही है। बहुत से लोग आज सड़कों पर हैं महादेव का नाम लेते हुए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, और जो लोग घर पर हैं, जो सफर में हैं, जो काम पर हैं, आप सबको भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो तैयार हो जाइए, गाने पुराने भी होंगे, नए भी, रोमांटिक भी होंगे, मस्ती भरे भी, और यादें वो तो बोनस में मिल ही जाएंगी। शुरू करते हैं आज का ये बॉलीवुड सिज़ल का सफर एक काफिराना तराने के साथ।

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम बड़े होने के बाद समझते हैं. जब पहली बार सुना था इसका ओरिजिनल वर्जन फ्रॉम द मूवी आवारापन, बस अच्छा लगा था. सालों बाद वही गाना जब अभी इसी रूप में सुना तो समझ आया, अरे इसमें तो पूरी जिंदगी की कहानी है. आपके पास भी हमारे साथ शेयर करने के लिए कोई कहानी हो तो 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर. अभी के लिए खामोशियों में ही अपना धुन ढूंढते हैं. खामोशियां गुनगुनाने लगी द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर. 1 2 4

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: आपके प्यार, आपके फरमाइशों और आपके मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आज बॉलीवुड सिज़्ज़ल के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। आइए पढ़ लेते हैं आपके कुछ मैसेजेस। जी हाँ, ये पहला मैसेज फ्रॉम हस्बैंड किशन टू वाइफ अनुष्का, हु इज बिजी प्रिपेयरिंग डिनर एंड द नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट स्पेशली टू देयर लिटिल डॉटर अंकिशा। जी हाँ, ये मैसेज आया है सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा से। वो करना चाहते हैं अगला गाना उनके बड़े भैया मनोज किरोदर के नाम, जो कि अभी भी काम कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड एट टेहूर एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ आरएम2। जी हाँ मनोज जी, सुया जी, थैंक यू।

यू वेरी मच अपना हमारे साथ अपना प्यार बांटने के लिए. वैसे राखी का क्या प्लान है, वो भी तो आने वाला है इसी हफ्ते. गुड इवनिंग निखिल भैया, नाइस प्रोग्राम ऑन रेडियो मस्ती एंड प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू. थैंक यू. और ये मैसेज आया है फ्रॉम यलेश राम ऑफ सुरीनाम. तो आपके आपके नाम और आपके फैमिली के नाम ये रिक्वेस्ट जो है आया है किशन जी से फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह विशाल मिश्रा की आवाज में. कैसे हुआ

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कभी कभी रेडियो पर सुना हुआ गाना किसी एक इंसान के लिए होता है, है ना? और वो इंसान जानता है कि गाना उसके लिए है। अगर आपके दिमाग में भी अभी किसी का चेहरा आया है तो समझ जाइए अगला गाना आपका है। और अगर उनका नाम हमें बताना है देन 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर आपके लिए खास मर्डर 3 से तेरी झुकी नजर।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, this was ब्रह्मास्त्र का से लिया गया हुआ देवा देवा, especially for all those जो अभी सेवा कर रहे हैं. पता है, यात्रा के दौरान सिर्फ चलने वाले ही नहीं होते. देखो, सड़क के किनारे पानी पिलाने वाले होते हैं, प्रसाद बांटने वाले होते हैं, ट्रैफिक संभालने वाले होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं. बहुत से लोग पर्दे के पीछे अपना योगदान देते हैं ताकि ये यात्रा सफल बन सके. उन सबको हम सलाम करेंगे. और आप भी अगर यात्रा पर हो परिवार के साथ, अपने गाड़ी में हो, तो कोई ना कोई तो बोलेगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दो. और इस गाने के साथ, इस अगले गाने के साथ, आई एम श्योर यही होने वाला है. अगर आपको याद है इसके लिरिक्स, तो साथ में गाइएगा, साजना, आई मी और मैं.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: स्वागत करते हैं फिर से आप सबका बॉलीवुड सिज़ल में। संडे की शाम है, धीरे धीरे ढलती जा रही है, लेकिन हमारा संगीत रुकने वाला नहीं है। आज जो लोग श्रावण मास की यात्रा में निकले हुए हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि मंजिल से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित घर पहुंचना। और जो लोग आज भी काम पर हैं, संडे होने के बावजूद ड्यूटी निभा रहे हैं, ये शाम आपके नाम। आप कहां भी हो, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बॉलीवुड का एक तो कमाल है कि आप जहां भी होते हैं, एक अच्छा गाना वहीं पर महफिल सजा देता है। चलिए अगला गाना सुनते हैं, आप सभी के नाम। मुश्किल है लेकिन कर पाएंगे।

0: with Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, श्रावण मास चल रहा है और मॉरिशस की सड़कों पर अभी भक्ति का एक

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Do you realize इस गाने को 15 साल हो गए भाई. पुराने बॉलीवुड के गानों में कुछ कुछ तो बात थी. धुनें याद रह जाती हैं, बोल याद रह जाते हैं, कई बार पूरा अंतरा भी बिना सोचे जुबान पर आ जाता है. जहां चलिए एक और पुरानी याद ताजा करते हैं, आपकी नहीं तो हमारी. या आपको ये गाना याद है तो मैसेज करके जरूर बताइएगा. 5499-1294 पर हमें आपके पैगामों का है इंतजार.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, नाचते नाचते अब ये नया हफ्ता शुरू होने वाला है। जो काम रह गया है वो कर लेंगे, जो सपने हैं उनके पीछे फिर भाग लेंगे, लेकिन आज की शाम थोड़ी देर बस जी लेंगे, है ना। जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस। द फर्स्ट वन, हेलो गुड इवनिंग, प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर आवर फ्रेंड रीना पुलवान, ऑल ऑफ अस मिस हर ड्यूरिंग वीकेंड्स, फ्रॉम बेस्टीज मनीषा, हंसिनी, रेशमी एंड दिया। और ये अगला गाना जाएगा राधा जी को, फ्रॉम कैनेडा, एंजॉइंग योर शो एंड ऑसम प्ले लिस्ट एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच राधा जी, आपके और आपके अपनों के नाम ये अगला गाना। The next song also goes out. आपने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये अगला song किया है dedicated for Vanraj of Ghoshtia to tell him that you love him so so much. और हमें भी आपसे बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार है, जो कि आपके मैसेजेस में दिखता है। So thank you for staying loyal to RM2. अगला गाना आप सभी के नाम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: दोस्तों वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है और हम पहुंच रहे हैं आज के आखिरी कुछ गानों की तरफ, लेकिन शाम अभी खत्म नहीं हुई तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, दिल खोल लीजिए और इस गाने के साथ आप भी क्यों ना गाइए। जी हाँ, ये संडे नाइट का जो मूड होता है ना, ये काफी अलग होता है क्योंकि कल से सब भाग दौड़ सब शुरू होने वाला है, लेकिन आज की रात बस आपके लिए। ये कुछ आखिरी गाने खुद के लिए डेडिकेट कर लीजिए। ये जो अगला गाना है, दैट्स अ वेरी स्पेशल डेडिकेशन टू ऑल दोस हु आर विद देयर लव्ड वंस राइट नाउ।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: दोस्तों, मैंने कविता लिखनी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ दिन हुए तो ऐसा लगा जैसे सोए हुए जज्बात जाग उठे, प्यार की उमंगें मचलने लगी हैं।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: और दोस्तों इसी के साथ आज के बॉलीवुड सिज़ल का सफर यहीं पर खत्म होता है। आज जो दो घंटे हमने साथ गुजारे, उम्मीद है उनमें आपको कुछ थोड़ी सी मस्ती मिली होगी, कुछ पुराने यादें मिली होंगी और फिर बहुत सारी मस्ती मिली होगी। श्रावण मास की यात्रा पर निकले सभी भक्तों को मेरी शुभकामनाएं। जो लोग अभी भी सड़क पर हैं, सावधानी से सफर कीजिएगा, और जो लोग कल सुबह फिर अपने काम पर जाएंगे, आज रात थोड़ा आराम जरूर कीजिए। मैं हूं निखिल और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले रविवार। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और जिंदगी में संगीत को थोड़ी सी जगह जरूर दीजिएगा। शुभ रात्रि। That's all from me.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन RM2 रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। और वैसे आज रात अगर आप किसी की यादों में खोए हुए हैं तो ये सफ़र हम साथ मिलकर तय करेंगे। जी हाँ, हर गाना एक एहसास होता है दोस्तों, और हर सुर एक कहानी सुनाती है। बस दिल खोल कर आप बस हमारा साथ दे दीजिए और हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए। लेकर आई है बहुत ही खूबसूरत गानों का सिलेक्शंस फॉर यू इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

कैंसिलेशन है। आज की रात सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के नाम। कभी-कभी जिंदगी में बस एक अच्छा गाना ही काफी होता है दोस्त मूड बदलने के लिए। इसलिए फिलहाल के लिए आप स्माइल कीजिए, रिलैक्स हो जाइए और रेडियो मस्ती के साथ इस रात को यादगार बना दीजिए। वैसे आप कहीं से भी अगर हमारा साथ दे रहे हो, ये अगला

तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये खूबसूरत रोमांटिक गानों का सिलेक्शंस? आई रियली होप कि आप भी गुनगुना रहे हो हमारे साथ। याद रखिए दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी होता है। अपनी स्माइल को कभी मत खोना। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त यानी कि आरजे निशा, और आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती, जहाँ हर रात बनती है थोड़ी और रोमांटिक। जी हाँ दोस्तों, और फिलहाल के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो शायद इस वक्त गाड़ी में हो। सो इफ यू आर ड्राइविंग, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए। ड्राइव केयरफुली एंड एंजॉय दिस वन।

रात का ये सुकून और आपका साथ, इससे ज्यादा खूबसूरत फीलिंग और क्या हो सकती है। तो चलिए बॉलीवुड के प्यार भरे नगमों के साथ दिल की हर धड़कन को महसूस करते हैं। अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो उस एहसास को रोकना मत मेरी जान। हर याद की अपनी एक मुस्कान होती है और आज की रात उन्हीं यादों के नाम, सिर्फ रेडियो मस्ती पर।

कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी उसकी बातें और कभी सिर्फ एक गाना पूरी कहानी सुना देता है वो एक गाने के जरिए सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती जहां पे गिनीशा बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं क्योंकि रोमांस अभी शुरू हुआ है और आज रात एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए जो भी हो दिल में प्यार और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहेंगे बाकी सब रेडियो मस्ती और बॉलीवुड संभाल लेंगे जी हाँ दोस्तों तो ये अगला नगमा खासकर आपके लिए और उनके लिए जो आपके दिल में बसते हैं

कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी उसकी बातें और कभी सिर्फ एक गाना पूरी कहानी सुना देता है वो एक गाने के जरिए। So stay tuned, stay connected on our radio, Radio Masti, जहां पे गिनीशा बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं क्योंकि रोमांस अभी शुरू हुआ है। और आज रात एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, जो भी हो दिल में प्यार और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहेंगे, बाकी सब रेडियो मस्ती और बॉलीवुड संभाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये अगला नगमा खासकर आपके लिए और उनके लिए जो आपके दिल में बसते हैं।

गाना एक पोस्टकार्ड की तरह होता है, किसी की यादों से भेजा हुआ। आज देखते हैं कौन सा गाना आपके दिल का एड्रेस ढूंढ लेता है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है जिंदगी में, और उस खामोशी को सिर्फ एक खूबसूरत मेलोडी ही समझ सकती है। ये है आपका लेट नाइट ग्रूव्स, आपके मनपसंद रोमांटिक गानों के साथ। बस यूं ही आप ही साथ देते रहिए।

प्यार में सबसे खूबसूरत चीज होती है उम्मीद और जब तक उम्मीद है तब तक हर गाना एक नई कहानी लिखता रहेगा तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अगला रोमांटिक ट्रैक सुनते हैं जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो मॉरिशस के बाहर भी होते हुए हमारा साथ दे रहे हैं दूर है लेकिन दिल के करीब हो आप थैंक यू सो मच जी अक्रॉस द ग्लोब इतने सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स इस वक्त इन खूबसूरत रोमांटिक गानों का मजा ले रहे हैं तो ऑन रेडियो मस्ती दिस वन गोज आउट टू यू

गाने। बस इतना ही तो चाहिए एक परफेक्ट नाइट के लिए। थैंक यू फॉर मेकिंग रेडियो मस्ती अ पार्ट ऑफ योर नाइट। लाइफ बहुत फास्ट चलती है दोस्तों, लेकिन आज कुछ देर के लिए स्लो हो जाइए। हर नोट को महसूस कीजिए, हर लिरिक्स को दिल में उतरने दीजिए। ये वक्त सिर्फ आपका है, आपके प्यार भरे गानों का। तो चलिए, स्पेशली स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स, ये अगला नगमा आपके नाम।

रात का ये सुकून और बॉलीवुड के एवरग्रीन रोमांटिक गाने, जी हाँ, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। मैं हूँ आपका दोस्त गिनिशा, जो आपका साथ निभा रही हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन। और अगला गाना शायद आपके दिल की धड़कन बन जाए, किसको पता। हर लव स्टोरी परफेक्ट नहीं होता है मेरी जान, लेकिन हर लव स्टोरी स्पेशल जरूर होती है। आज उन्हीं इमोशंस को सेलिब्रेट करते हुए, हां जी, अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके प्यार के नाम।

उसके बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे आपके लिए, लेकिन प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता है, इस बात को याद रखना। कभी इंतजार का, कभी दुआओं का और कभी सिर्फ एक मुस्कान का नाम भी होता है प्यार। आज के रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स आपके दिल को जरूर छू जाएंगे। बिल्कुल हमारे प्यारे प्यारे रेडियो मस्ती फैमिली, अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, आप किसी की यादों में खोए हुए हो, कहना मुश्किल लग रहा है, तो आज का गाना उसकी जगह बोल देगा। दिल से सुनिए, क्योंकि म्यूजिक कभी झूठ नहीं बोलती।

Well guys, I really hope कि हर एक गाना आपको दिल से अच्छा लग रहा है और बस आप भी हमारे साथ गुनगुना रहे हैं। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार क्या होता है, तो शायद

तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, रात जितनी खामोश होती है दिल की बातें उतनी ही गहरी हो जाती हैं। आज की रात बॉलीवुड के रोमांटिक मेलोडीज के नाम, जी हाँ, जो बात लफ्जों में ना हो पाए शायद एक गाना कह दे आपके दिल की बात। वैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बालकनी में चाय के साथ बैठे हुए हैं या बस अपनी दुनिया में खोए हुए हो तो रेडियो मस्ती आपका परफेक्ट कंपेनियन है। तो चलिए प्यार के रंगों में रंग जाते हैं। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा साथ दिया इस खूबसूरत से शो में, इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। गिनिशा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखना और बस कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑलवेज ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.